因都在立广播电台，听众朋友们，我们现在播送加格基特辛格的歌曲。这首歌曲的名字是《吉提纳鬼》，请收听。

सीता स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिवजी के धनुष भंग का संदेश सुनकर अयोध्या में हर्ष और आनंद की लहर दौड़ गई। राजा दशरथ

0: पुत्रों के विवाह के लिए बारात सजाने की तैयारियों में लगे हैं। राम लक्ष्मण तो जनकपुर में हैं, अतः भरत को हाथी घोड़े तथा रथ सजाने का आदेश हुआ। शौर्य का बाना धारण कर रणधीर वीर नगर के बाहर एकत्रित हुए। सभी चुने हुए छैल छबीले वीर चतुर नवयुवक हैं। भेरी और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर इनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं। सारथियों ने ध्वज पताकाओं तथा रत्नाभूषणों से रथ सजाए हैं। अगणित श्यामवर्णी घोड़े ऐसे हैं जो जल पर भी स्थल जैसी द्रुत गति से दौड़ते हैं, ऐसे वेग से कि उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। रथों पर चढ़ी बारात नगर के बाहर आ जुटी है। घंटों से सुसज्जित मतवाले हाथी इस प्रकार झूमते चले जैसे सावन के श्यामवरणी बादलों के झुंड गरजते हुए चलते हैं।
1: छरे छबीले चयन सब

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 108। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा।

गांधी मीडिया सोशल सरता कानल यूट्यूब टेलीग्राम सपर्ति स्वात अल हक देंगान से चारा रेशमी मने तापकान इंदिविदु इंदिविदु तरसबुत सबागाय टेररिस्ट कपुतु स्वान इन्नी तिडा हानिया आकन मंबांतु मंबोंकार इकोसिस्टम टेरर देंगान मंबातासी जारिंगान कौवांगन मरेका परगिराकन मरेका कमांपुआन परिक्रूतन मरेका सरता अक्तिवतास यंग तरकाय देंगान टेररिस्ट में tetapi juga akan mengkirimkan pesan pencegahan yang kuat terhadap tindakan anti-nasional dan terorisme. Langkah ini akan membantu lembaga keamanan dan penegak hukum dalam mengorganisasikan tindakan hukum, penyelidikan dan pencegahan di tingkat nasional maupun internasional. Sekian. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Bengal.

तरीमा काशी बानिया पारा पंदिंगार यंगतर होरमात पनिया रंडा मंदिरा कुमारी बरसामा देंगन समवा स्टाफ सक्सी भाषा इंडोनेशिया सबलुम मंगुंदुर कान दीरी धारी उडारा कामी उचाप कान सलामत तिंगाल संपाय बड़जुंपा कम बाली बेसुक पाड़ा वाक्तु धन गलुम्बांग यंग सामा तरीमा काशी बान्या।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार

0: साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और

0: हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉ मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening.

0: शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनाकद होगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और अखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायश गाह पर मुनदा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजू खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अलावामी गोल करने वाले खिलाड़ी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित

0: रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to Indonesia, Australia and New Zealand will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia Comprehensive Strategic Partnership through discussions on defence and security, trade and investment. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva in Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organised by the United Nations Trade and Development will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. India will host the 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning today in Kochi in Kerala. Ministry of Women and Child Development said senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Election Commission has announced the schedule of by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. The by-elections will be conducted for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur constituency in Gujarat and Datia constituency in Madhya Pradesh. As per the notification, nominations will be accepted until the 13th of July and scrutiny will be held on the 14th of July. The polling for these seats is scheduled to be held on the 30th of July. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the Special Investigation Team, SIT, probing the counting of donations.

0: 만든 घर आंगन के आज के शो में आप सबका स्वागत है. आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ रश्मि कुकरेति. स्वीकार कीजिए मेरा और मंजुला का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार.
0: और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर.
1: तो मंजुला, आज जो 6 जुलाई का दिन है, भारतीय इतिहास में दो महत्वपूर्ण हस्तियों की याद दिलाता है.
0: और आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम जी की, एक ऐसे नेता जिन्होंने सामाजिक समानता, अधिकारों और देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया.
1: और साथ ही आज जयंती भी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, जो कि एक प्रखर शिक्षाविद थे, विचारक थे, राजनेता थे और इन्होंने राष्ट्रीय एकता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया. इन दोनों महान व्यक्तित्व को FM गोल्ड के स्टूडियो से हमारी विनम्र श्रद्धांजलि.
0: और दोस्तों, अब आज का सवाल, आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन सा है, यानी फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है, लिपस्टिक, काजल, बिंदी या फिर कुछ और, कोई ऐसी चीज जो आप मेकअप करते वक्त हमेशा अप्लाई करती हैं या करते हैं, यानी आपका फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है, जवाब हमें ईमेल लिखकर भेजिए. हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com.
1: तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे आने वाले हैं मधुर संगीत, दिलचस्प बातें और ढेर सारी मस्ती.

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म दो रास्ते से।
1: और मंजुला, कल भारतीय लोक कला ने अपने सबसे बुलंद आवाजों में से एक को खो दिया। पर्णवानी की महान साधिका पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई जी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं।
0: और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद कोई पुरस्कार नहीं थी, बल्कि ये थी कि उन्होंने एक लोक कला को आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। उन्होंने साबित किया कि सच्ची कला न सीमाएं देखती है, न परंपराओं की दीवारें, वह बस दिलों तक पहुंचती है।
1: जी, और उनकी आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी गाई हुई महाभारत की कथाएं, उनका संघर्ष और उनकी विरासत हमेशा हमारी संस्कृति में जीवित रहेगी। FM गोल्ड के स्टूडियो से उनको बहुत श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
2: पद्म विभूषण तीजन भाई।
3: ऐसे है, मैं तो पहली पंडवानी का तेलत खुदे नहीं जाना रहे, लड़का जात में लड़का मती खेलना कूदना यही हमारे काम रहा है। ने कहानी कथस ते कहानी सुनता हूँ, ऐसे की कब के द्रौपदी तीर हरण के दिन के सुना था।

0: और आज का सवाल हम फिर से दोहराते हैं कि आपको ये बताना है कि आपका फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट कौन है। क्यों रश्मि, आप क्या कहती हैं इस बारे
1: जी,
0: में
1: जी, मेकअप लुक कौन सी है, आपको क्या पसंद है, और एक जवाब भी आ गया है मंजुला। और क्योंकि देखिए ये कार्यक्रम घर आंगन केवल महिलाओं के लिए नहीं है, परिवार के लिए है। तो नवीन भाटिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीनगर से, कह रहे हैं क्या जेंट्स भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल आप बता सकते हैं, और क्योंकि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप हमारे श्रोता है, वो कह रहे हैं कि मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है, वैसे मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ शेविंग करता हूँ, अच्छे से तैयार हो जाता हूँ बढ़िया कपड़े पहन के, तो बहुत अच्छी बात है। और ये सवाल था हमारा मंजुला, और सवाल पे सवाल हम लगातार किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं श्रोता लगातार हमसे जुड़ रहे हैं ना।

0: और एक सवाल मैं तुमसे मंजुला कर रही हूँ,
1: कीजिए कीजिए।
0: क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसे बनाया नहीं गया बल्कि एक ही विशाल चट्टान को तराश कर निकाला गया हो,
1: और वो भी ऊपर से नीचे? जी हाँ, आज की आध्यात्मिक यात्रा पे ले चलते हैं। और मैंने ऐसे एक मंदिर को सुना है, महाराष्ट्र के एलोरा स्थित कैलाश मंदिर की ओर। एक ऐसा स्थापत्य है रश्मि, जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान रह जाती है। जरा सोचिए, इस मंदिर में एक भी पत्थर जोड़कर नहीं लगाया गया है। लगभग 2,00,000 टन चट्टान को हटाकर एक ही विशाल शिला से पूरा मंदिर तराशा गया। और सबसे हैरानी की बात, काम ऊपर से नीचे की ओर शुरू हुआ, यानी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि यदि एक भी गलत चोट लग जाती तो उस पत्थर को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था।
0: जी बिल्कुल, और यही तो वजह है कि जो कैलाश मंदिर है ना, उसको दुनिया की सबसे अद्भुत इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। और देखिए ना, कितनी हम आजकल तो कितनी सारी सुविधाएं हैं, क्रेन है, कंप्यूटर है, आधुनिक मशीनें हैं, लेकिन उस समय अद्भुत कल्पना, गणना, धैर्य और असाधारण शिल्प कला से 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित करते हुए इसे बनवाया था मंजुला।
1: और मंदिर का नाम कैलाश इसलिए रखा गया क्योंकि इसके भगवान जो शिव हैं उनके दिव्य धाम कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण के जीवंत दृश्य उकेरे गए हैं। हर मूर्ति, हर नक्काशी मानो पत्थरों में सांस लेते हुए महसूस होती है।
0: तो अगली बार मंजुला कभी आप एलोरा जाएं तो कुछ पल शांत बैठिए, उन पत्थरों को देखिए जिन्हें सदियों पहले किसी कलाकार ने अपनी आस्था और तपस्या से जीवंत बना दिया। वहां जाकर एहसास होता है कि कुछ जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती मंजुला, बल्कि महसूस करने के लिए होती है।
1: और कैलाश मंदिर हमें यह भी सिखाता है कि जब दृष्टि स्पष्ट हो, धैर्य अटूट हो और समर्पण पूर्ण हो तो पत्थर भी इतिहास बन जाते हैं। तो अगली बार अगर यात्रा की आपने प्लान की तो यहाँ पे जरूर जाइएगा।
0: और ये जो मंदिर है, ये भारत की आध्यात्मिक चेतना, वैज्ञानिक सोच और अद्भुत शिल्प कला का जीवंत प्रमाण है।

0: अभी हम सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और रूप कुमार राठौर की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म भैरवी से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा आज का सवाल क्या है, तो जवाब भी आने लग गए हैं। और अभी अंशु माला जी ने एक बहुत ही खूबसूरत मेल भेजा है। उन्होंने लिखा है कि नमस्ते मंजुला जी, मैं ऐसे तो फुल मेकअप लुक पसंद करती हूँ, हेवी नहीं और सब कुछ आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ऐसा जो मेकअप है वो मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई है कि साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है इन क्लॉथ्ड कॉग्निशन, जिसका मतलब है कि हम जो भी पहनते हैं या खुद को जैसे प्रेजेंट करते हैं वो सच में हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही रश्मि जी, आपका क्या सोचना है?
1: मैं मुझे तो पास भी कोई मेल है। बहुत सारी मेल्स हैं मेरे पास। अनन्या की मेल है, वो कह रही है कि मेरा पसंदीदा मेकअप जो लुक है वो बड़ा सादगी भरा है, न्यूड मेकअप लुक है, और कहती है कि हल्का मेकअप पसंद है, पतला आईलाइनर लगाती हूं, लिपस्टिक लगाती हूं, भारी मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे प्राकृतिक और सादा लुक अच्छा लगता है, ऐसा वो कह रही हैं। और साथ में चरणदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चौधरी वास, राजू अग्रवाल, निर्मल देवी, वो कह रहे हैं कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, आप लोगों के प्यार के साथ हैं, वो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयां जी, है ना। और देखिए कुछ जो पुरुष हैं वो कह रहे हैं कि हम काजल लिपस्टिक तो नहीं लगाते, बस नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। भाई ये तो सादगी भरा जो है, जो ये तो स्वच्छता है, ये तो पहली शर्त है। अगर आप खूबसूरत देखना चाहते हैं, स्वच्छता तो जहां होते हैं वहां तो ईश्वर का वास होता है।
0: और रोहिणी से आराधना, वंदना, राधा, मीनाक्षी, ईशा ये लिखते हैं कि हमें तो सिंपल लुक ही पसंद है, साड़ी का लुक सब जगह काम आता है, चाहे मीटिंग हो या पार्टी या फिर शादी का कोई फंक्शन, बस आप साड़ी पहन लीजिए, हल्का या भारी कोई भी पहन सकते हैं
1: जी।
0: और एक और मेल आया है, कोई क्या दिख रहा है, उग्रसेन यादव जी का, कि आप दोनों को मेरा आदर सहित राम राम, और घर आंगन में जो मैसेज कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, थोड़ा हर किसी को जो मर्यादा में रहें तो अच्छा रहेगा। चलिए आपके मेल सबके लिए बहुत,
1: देखिए हम तो ये कहेंगे कि सबसे जो खूबसूरत मेकअप है ना वो होता है आत्मविश्वास, मुस्कान और सादगी। बाकी देखिए ये तो जो चेहरे पर लगाने वाली चीजें हैं,

0: हमें तो कहा जाता था कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप पोषण से भरपूर खाना खा रहे हैं और साफ धुले हुए कपड़े पहन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका जो खूबसूरत स्वास्थ्य अपने आप बताएगा कि आप कितनी खूबसूरत हैं या आप कितने हैंडसम हैं।
1: बिल्कुल ठीक है। और एक खास बातचीत हम अब करने जा रहे हैं कि भारत में एक ऐसी 300 साल पुरानी फ्लोरिंग तकनीक है जो बिना बिजली खर्च किए घर को एसी जैसी ठंडक देने में मदद करती है। तो ये है रश्मि जी केरल की 300 साल पुरानी और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कावी फ्लोरिंग। सिर्फ एक फर्श नहीं बल्कि भारतीय बुद्धिमत्ता, कारीगरी और सस्टेनेबिलिटी का शानदार उदाहरण है। आज हर घर में एसी, कूलर और बढ़ते हुए बिजली के बिल हमारी चिंता के कारण बन चुके हैं। तब हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ मिलकर एक ऐसा समाधान खोज लिया जो आज भी उतना ही इफेक्टिव है।
0: भाई वाह क्या बात है, कभी तो तुम हमें ले जाती हो मंदिरों की ओर और कभी बताती हो कावी फ्लोरिंग के बारे में, क्योंकि भाई ये तो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि चूना, आयरन ऑक्साइड और पानी जैसे प्राकृतिक तत्वों से बनाई जाती है। और तुमने जो बताया उसके मैं और जोड़ दूं कि नारियल के तेल से घंटों पर इन पे पॉलिश किया जाती है, जानते हो, और ये फर्श गर्मियों में पैरों को बड़ा ठंडा महसूस करवाता है और घर के भीतर का तापमान अपेक्षाकृत आरामदायक बनाने में बहुत मदद करता है।
1: बिल्कुल, और सोचिए जहां हम गर्मी से बचने के लिए हजारों यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से ही ठंडक उधार ली थी। और इतना ही नहीं, कावी फ्लोरिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसमें सीमेंट, हानिकारक रसायन का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है, यह वर्षों तक टिकती है और समय के साथ इसकी चमक बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात यह पर्यावरण पे भी कम बोझ डालती है।
0: तो हम तो ये कहेंगे जैसा हमारे अभी श्रोता ने कहा कि आधुनिक बढ़ने की दौड़ में हम कभी कभी बुद्धिमान परंपराओं को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल लिविंग की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना अपनी पुरानी तकनीकी की ओर जाएं जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, है ना।
1: तो अगली बार जब गर्मी आपको परेशान करे तो याद रखिए भविष्य की कई समस्याओं का समाधान शायद हमारे अतीत की विरासत में ही छिपा है।
0: और इस ठंडक में क्या पता आपको किसी का झुमका भी मिल जाए।

0: अभी हम सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म परख से।
1: और इसके साथ हमारे पास जो हमने क्वेश्चन पूछा था ना, तो हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़ गए हैं महेश अग्रवाल जी, मीना अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ हरियाणा से, कह रहे हैं कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है, खूबसूरत बातें चल रही हैं, जानकारी अच्छी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें क्या पसंद है। कभी भी तैयार होकर जाते हैं तो भाई किस प्रकार तैयार होते हैं, तो हमें इंतजार रहेगा। और देखो भाई मंजुला, अगर हम तैयारी की बात करें तो सबसे ज्यादा जब तैयार होते हैं तो वो होती है शादी, है ना,
0: कहीं भी।

0: कोई आयोजन या उत्सव है ना, तो शादी में जाने के लिए तो आप अच्छे से तैयार होती होंगी। मैं भी साड़ी वगैरह निकालती हूँ और हमेशा साड़ी में शादी में जाने के लिए तैयार होती हूँ, है ना।
1: बिल्कुल, तो शादी की बात जब हो ही रही है तो चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे समाज में शादी को केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। लेकिन एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि शादी का फैसला केवल माता पिता का होना चाहिए या उस व्यक्ति का भी जिसकी पूरी जिंदगी इससे जुड़ने वाली है? आप क्या सोचते हैं?
0: भाई मुझे लगता है माता पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही चाहते हैं ना। भाई उनका अनुभव है, उनकी समझ है भाई, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता भी करते हैं। लेकिन शादी एक ऐसा निर्णय है मुझे लगता है मंजुला, जिसे जीवन भर निभाना होता है। इसलिए भाई बच्चों की इच्छा, उनकी सहमति और उनकी भावनाओं का सम्मान होना उतना ही आवश्यक है जितना भाई माँ बाप की या परिवार की राय।
1: बिल्कुल सही, लेकिन सहमति यानी कंसेंट केवल एक औपचारिक हाँ नहीं है रश्मि जी, यह एक स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के लिए गया निर्णय है। यदि कोई व्यक्ति डर, भावनात्मक दबाव, सामाजिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक मजबूरी के कारण शादी के लिए तैयार होता है तो उसे वास्तविक सहमति नहीं कहा जा सकता।
0: हम तो ये कहेंगे भाई, जब किसी युवक या युवती को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है तब रिश्ते और अधिक मजबूत होते हैं और स्वस्थ होते हैं। और भाई हम तो ये कहेंगे कि सफल जो विवाह होता है उसकी नींव केवल परंपराओं पर नहीं टिकी होती बल्कि आपसी सम्मान, समझ और स्वेच्छा पर टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और माता पिता का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है लेकिन अंतिम निर्णय में बेटे या बेटी की इच्छा को भी समान महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि शादी कोई पारिवारिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा व्यक्तिगत निर्णय है।
0: तो हम तो ये कहेंगे भाई मजबूरी से बना रिश्ता कुछ समय तक ही चल सकता है लेकिन सहमति से बना रिश्ता विश्वास और सम्मान के साथ जीवन भर खिल सकता है।

0: चाय पे बुलाने के वक्त आप क्या पहनती हैं, कैसे सजती हैं, कैसे संवरती हैं, यही तो है हमारा आज का सवाल। तो कार्यक्रम है घर आंगन, मैं हूं आपके साथ मंजुला और रश्मि जी। और हमारा सवाल तो आप जानती हैं कि आज आपको कौन सा मेकअप लुक पसंद है वो बताना है। और अभी हम सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म सौतन से।
1: और एक और जवाब हमारे पास आया है, आप हैं डी राजेश्वर राव एडवोकेट, और वो कह रहे हैं कि खूब सारा पानी पीजिए और ऐसे चीजें खाइए जिसमें खूब सारा पानी हो, जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन एंड सेलरी, यानी कि खीरा खाइए, है ना, खरबूज खाइए, तरबूज खाइए और खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि पानी पीने से जो त्वचा है वो वैसे ही खूबसूरत लगती है और आपकी जो रिंकल्स होती हैं वो हट जाती हैं, मतलब कम दिखने लग जाती
0: है। यानी इन्होंने मेकअप की बात अंदर से बताया है, यानी भीतर की खूबसूरती कैसे बढ़ेगी वो बताया है।
1: जी,
0: तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले विषय की ओर, असली नारीवाद यानी रियल फेमिनिज्म क्या है। होता ये कि आज फेमिनिज्म यानी नारीवाद शब्द सुनते ही अक्सर बहस शुरू हो जाती है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या नारीवाद पुरुषों के खिलाफ है, क्या ये हमारी संस्कृति से नफरत करना सिखाता है, या फिर बराबरी और सम्मान की बात करता है।
1: हमें तो लगता है कि हमें साथ मिलकर चलना है, बराबरी के अधिकारों की बात करनी है और हर व्यक्ति चाहे वो महिला हो या पुरुष उसे समान अवसर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। मंजुला, मैं तो ये कहूंगी कि हम ये सोचें, ऐसा क्यों ना सोचें कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले वो मनुष्य है ना, हमें देवी ना बनाया जाए, सिर्फ मनुष्य का दर्जा ही मिल जाए वही बहुत है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आज महिलाएं अगर पढ़ रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं, विज्ञान, सेना, खेल, राजनीति और अंतरिक्ष तक अपनी पहचान बना रही हैं, तो इसके पीछे कई साहसी महिलाओं का योगदान है। तो वास्तव में नारीवाद का अर्थ ये नहीं है रश्मि कि अपनी संस्कृति, परिवार या परंपराओं से अलग हुआ जाए। जो परंपराएं सम्मान, समानता और गरिमा को बढ़ाती हैं वो हमारी ताकत है, और जो भेदभाव पैदा करे उन्हें बदलना ही समाज की प्रगति है।
1: जी बिल्कुल, हमें याद रखना चाहिए कि ताकत केवल कठोर होने में नहीं है बल्कि संवेदनशील होने में है। नेतृत्व पुरुषों का भी गुण है और करुणा जो है महिलाओं में भी आ सकती है, तो दोनों में शक्ति भी हो सकती है और कोमलता भी हो सकती है ना।
0: और एक बेहतर समाज तब बनता है जब महिलाएं और पुरुष एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी बनते हैं। तो आइए ऐसा समाज बनाए जहां बेटा और बेटी दोनों के सपनों को एक जैसी उड़ान मिले, क्योंकि जब बराबरी बढ़ती है तब विकास भी बढ़ता है और यही है रियल फेमिनिज्म।
1: और मुझे एक कविता याद आ रही है जो वरिष्ठ हमारी कवित्री है ममता कालिया की, कहो तो मैं सुना दूं मंजुला। वो कहती है कि जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील, वो दीवार पर लगाती है खूंटियां, कौन सी, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव रखती दीवार की दूसरी ओर पहुंच जाती है। तो ये है असली नारीवाद, है ना।
0: बिल्कुल यही है, और असली नारीवाद है साथ रहने में, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबके साथ चलने में।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म सौदागर से। और एक और मेल आया है, एक या अनेक आए हैं, तो इसमें अभी जो भेजा है कामायनी जी ने, वो बहुत ही खूबसूरत बात लिखती हैं कि मुझे मेकअप वैसे तो कम पसंद है पर चेहरे के दाग धब्बे छिपाने के लिए कंसीलर यूज करना अच्छा लगता है।
1: और एक और मेल आया है सतप्रकाश अनोठिया रोहिणी जी से, रोहिणी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कैलाश पाषाण में छिपी चेतना को शिल्पियों ने जगाया है, ऊपर से नीचे काट पहाड़ साक्षात शिव को बुलाया है। वो कहते हैं मंदिर नहीं नश्वर जग में अमरता का एक प्रमाण है और क्षणभंगुर मानव के हाथों में छुपा अविनाशी भगवान है। बहुत खूबसूरत, वाह।
0: और गौरी शंकर जी ने लिखा है कि आप दोनों बेटियों को राम राम, अभी झुमके पर गाना चल रहा था, आज तो हमें शादी में जाना भी है, चाहे कितना भी मेकअप कर लो, अगर असली जेवर ना हो नकली भी पहन लो तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं।
1: और पुरुष मेकअप के बारे में वो कह रहे हैं कि चेहरे की झुर्रियां मिटे जल के नया निखार, मैन ग्रूमिंग का चल बड़ा जग में अब व्यापार, लिप बाम और कंसीलर पुरुष करें उपयोग, सुंदरता की रेस में आ गए हैं सब लोग। भाई वाह, क्या कविता पे कविता आ रही है।
0: और अनिल मेहता जी के मेल से लगता है उनकी वाइफ ने लिखा है, मीनू मेहता ने, कि मुझे आंखों में काजल लगाना पसंद है, उसके बिना मेरा मेकअप कंप्लीट ही नहीं होता
1: जी। और मधु किरण दिल्ली से कह रही हैं ज्यादातर शादी पर हम अच्छी तरह तैयार होकर जाते हैं पर घूमने जाते हैं तो थोड़ा कम तैयार होकर जाते हैं। तो एक जमाना था जब केवल माता पिता की इच्छा पर शादी होती थी, शादी का भी जो आपने विषय लिया था उसी के बारे में वो कह रही है, परंतु अब तो जिसकी शादी है उसकी पसंद ही पहले पूछनी पड़ती है ना।
0: और इद्रिस सैफी जी कहते हैं कि उनको बाल बनाना और शेविंग करना अच्छा लगता है, चलिए तो आपके रोज का काम है ही।
1: और प्रकाश चंद गोगिया दिल्ली से जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं जब कहीं भी जाना होता है तो तकरीबन महिलाएं ही ज्यादा अच्छी तरह तैयार होकर जाती हैं, और कह रहे हैं कि पुरुषों को तो ये है भाई थोड़ा कम तैयार होकर भी चल देते हैं, ऐसा कह रहे हैं।
0: और महेश अग्रवाल जी लिखते हैं कि इंसान की खूबसूरती

0: उसके सजने में नहीं, उसके चेहरे की मुस्कुराहट से होती है। मुस्कुराने के बाद सबसे ज्यादा बड़ा श्रृंगार है जो अच्छे गहने और अच्छे कपड़ों को, उसकी भी खूबसूरती बढ़ जाती है। बहुत ही अच्छी बात।
1: हम तो ये कहेंगे मंजुला, अगर किसी की आंखों में प्यार हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो वो व्यक्ति सबसे खूबसूरत दिखता है, क्या कहती हो?
0: बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले जो सुबह सुबह हमारे सर पे एक सवाल नाच रहा होता है कि आज क्या बनाऊं, और इसी सोच में आपका काफी समय निकल जाता है। अगर हाँ, तो एक स्मार्ट जीवन शैली की आदत डालिए, वीकली मील प्लान।
1: मतलब स्मार्ट दिखना भी जरूरी है और साथ में स्मार्ट जीवन शैली भी अपनानी जरूरी है। मैं समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। यानी कि ऐसा कर सकते हैं मंजुला कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन पूरे सप्ताह की ग्रोसरी की खरीदारी कर लें, और इससे बार बार बाजार जाने का जो समय है वो बचेगा और अनावश्यक खर्च भी कम होगा।
0: बिल्कुल। और थोड़ी सी पहले से तैयारी कीजिए, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर बर्फ की ट्रे में जमा दीजिए। जब भी खाना बनाना हो बस एक टुकड़ा निकालिए और आपका मसाला तैयार।
1: जी, ये सब हमारी दादी नानियां करती आई हैं भाई। जो प्याज और टमाटर हैं भाई, जब टमाटर सस्ते होते हैं खरीद लेती हैं, उन्हें उबालकर बना लेती हैं और फ्रिज में उनके क्यूब्स बना के रख लेती हैं। ये सब करते आए हैं, पहले तो सुखा लिए जाते थे टमाटर को। तो ये सब किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रेवी बनाकर भी रखी जा सकती है।
0: और इडली डोसे का घोल पहले से तैयार रखिए, सुबह का पौष्टिक नाश्ता बिना किसी भाग दौड़ के।
1: बिल्कुल। और धनिया पुदीने की चटनी को कैसे भूल सकती हो? उबले हुए चने हो, राजमा हो, अंकुरित अनाज हो, सलाद की सब्जियां धोकर सुखाकर डिब्बों में रख दीजिए। इससे हर दिन ताजा और पौष्टिक भोजन बनाना आसान हो जाएगा।
0: बिल्कुल सही। तो याद रखिए, स्मार्ट जीवन शैली का मतलब ज्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि समझदारी से योजना बनाना है। सप्ताह में कुछ घंटों की तैयारी और आपको पूरे समय का जो ऊर्जा है, मेहनत है, वो सब बच जाएगा। तो आप क्या कहती हैं, इस सप्ताह साप्ताहिक भोजन की तैयारी अपनाइए और देखिए रसोई का काम कैसे आसान, व्यवस्थित और तनाव मुक्त हो जाता है।
1: जी, ये मैं करने वाली हूँ मंजुला।

0: और ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, फिल्म है ज्वेल थीफ।
1: और इसी के साथ हमारी आज की प्रस्तुति यहीं तक, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी।
0: फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। दीजिए रश्मि और
1: मंजुला को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की

घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और 15 सेकंड और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करो उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ दोस्तों, आज प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ इस फिल्मी सफर में, जिसमें हम लेकर आते हैं भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की कहानियों को, फिल्मों से जुड़ी बातों को जिन्होंने समय के साथ अपनी चमक और भी बढ़ा दी। आज बात करेंगे 1990 की उस फिल्म की जिसने ना सिर्फ दो नए चेहरों को रातों रात सुपरस्टार बना दिया बल्कि हिंदी फिल्म संगीत को भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जी हाँ, आप मेरी बातों से अंदाजा लगा ही चुके होंगे और जब आपने अंदाजा लगा ही लिया है तो फिर देर किस बात की, जवाब मेल के जरिए हम तक पहुंचा दीजिए। मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे तब तक हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। और हाँ, अभी भी अगर आप अंदाजा लगाने में थोड़ी सी चूक कर रहे हैं तो इसको सुनने के बाद आप 100% श्योर हो जाएंगे कि आज हम कौन सी फिल्म चुनकर लाए हैं 1990 की।

जी हाँ, और हम भी आपको बता देते हैं कि आज हम लेकर आए हैं 1990 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म आशिकी, जिसने अपने संगीत की वजह से फिल्म जगत में झंडे गाड़ दिए। आज भी इस फिल्म के गीत, इस फिल्म का संगीत कल की तरह ही लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है। इस फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार सानू अपना करियर बनाने में सफल रहे। इस फिल्म के संगीत एल्बम को प्लेनेट बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंड ट्रैक में चौथा स्थान मिला था। बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त। और फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट जी ने, गुलशन कुमार मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, और फिल्म की कहानी लिखी थी रोबिन भट्ट और आकाश खुराना ने। संगीत, जैसा कि हमने आपको बताया कि नदीम श्रवण जी का था, और फिल्म के सितारे थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत। आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं और उनको भी हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद।

राहुल राय ने फिल्म में राहुल राय का ही किरदार निभाया, यानी कि इनका फिल्म में भी नाम यही था। दिल्ली की कुड़ी अनु अग्रवाल ने फिल्म में अनु बर्गिस का रोल प्ले किया था। अवतार गिल पुलिस इंस्पेक्टर देश पांडे के किरदार में नजर आए। रीमा लागू बनी मिसेस विक्रम रॉय, यानी कि राहुल की माँ। टॉम अल्टर बने आर्मी कैंपवेल। मुस्ताक खां रफू मास्टर, जावेद खां अंकल पीटर और राहुल के दोस्त का किरदार निभाया था दीपक तिजोरी ने, जो बने थे बल्लू। और आपको बता दें कि फिल्म की जो कहानी है वो राहुल और अनु के बीच एक प्रेम, खूबसूरत जो प्रेम है उसके ऊपर है। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं, लेकिन संगीत और प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। परिवार, समाज और परिस्थितियों की कठिनाइयों के बावजूद दोनों अपने रिश्ते और सपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, विश्वास और उम्मीद की कहानी भी है। फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर आज भी उतने ही फेमस हैं जितने कल थे। और इन गानों को अपनी आवाज़ के जादू से संवारा था कुमार सानू, अनुराधा पोचवाल, उदित नारायण, नितिन मुकेश ने। संगीत नदीम श्रवण और गीतकार थे समीर रानी, मलिक और मदन पाल।

जी हाँ, ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के करीब है। हम और आप ले लीजिए, हमें जब भी हम बात करते हैं अगर उस दौर की 1990 की, तो शायद इस फिल्म का नाम ज़रूर लेते हैं। इस फिल्म के बाद राहुल रॉय का हेयर कट बहुत पॉपुलर हुआ था। युवाओं में उनके जैसे हेयर कट करवाने की एक होड़ जैसी मच गई थी। महेश भट्ट इंदिरा रॉय के घर गए थे उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी एक मैगजीन उस टाइम रिलीज़ हुई थी। और इंदिरा जी जो थी वो एक चैरिटी वर्कर थी यूनिसेफ की, और राहुल रॉय उनके बेटे थे। महेश भट्ट ने जब राहुल रॉय को देखा तब उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें अपनी फिल्म आशिकी में उन्हें कास्ट करना है। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहते थे, मगर पूजा ने मना कर दिया था क्योंकि तब वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं थी। और जानते हैं आप, इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महेश भट्ट की असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ।

नए कलाकारों के साथ बनी फिल्म मैंने प्यार किया की अपार सफलता के बाद उसको देखते हुए महेश भट्ट के दिमाग में भी नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया आया और उन्होंने बना दी फिल्म आशिकी। इस फिल्म के गाने इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि टी सीरीज की ऑडियो कैसेट की सेल 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। पहले मुख्य भूमिका के लिए दीपक तिजोरी का नाम चयन किया गया था, लेकिन राहुल रॉय से मिलने के बाद महेश भट्ट ने राहुल को ही मुख्य हीरो के रूप में लिया और दीपक तिजोरी को सपोर्टिंग रोल दिया।

ढेर सारे संदेश आपके पहुंच गए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया जी जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता डिंपल जी हमारे साथ हैं। नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद पराग ये पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अजीत भापसर जी ढेर सारी जानकारी के साथ, प्रमिला भापसर के साथ बीरन गांव गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत जी गाँव लोहागढ़ ठाकुरबाला से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है, ओम प्रकाश राय उषा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमारे साथ हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत संचित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे साथ हैं। और हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया पप्पू जी हमारे साथ स्टेशन रोड जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंजोनिया जालौन से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक जी हैं। सुरेश यादव, अनिता जी हमारे साथ नेहरू चौक पेठन से जुड़े हुए हैं। और अनारकली बाजार से सुनील पाठक, कमला पाठक जी हमारे साथ हैं।

नागांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरासी गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूंडी जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है वो हांडी खेला जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा जी है हमारे साथ। हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार मनोज जी हमारे साथ हैं। सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात से हैं। संबलपुर कांकेर से फागुन राम ज्योति यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी का एक और संदेश आया है। और गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हमारे साथ हैं। मोहम्मद फरमान जी मुरादाबाद धुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश है पिपरिया से कमलकांत गुप्ता दीपा रिमझिम गुप्ता जी का है। मोहम्मद सैदाबासी निगत परवीन और उनके पूरा परिवार ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से है। इंद्रनगर भवरपुर से राधेश्याम देवानगन जी हैं हमारे साथ में। बटिंग रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारक अंजू जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम है। भबरपुर बसना से गोविंदा हमारे साथ हैं। संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी हमारे साथ बागपत उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन उषा मोहन जी हमारे साथ हैं। और मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपान जी हमारे साथ हैं। रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफ़र में हम सफ़र बनने के लिए।

तो दोस्तों यही थी 1990 की सदाबहार फिल्म आशिकी और उससे जुड़ी दिलचस्प दास्तान। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे किसी और यादगार फिल्म के अनसुने किस्से, शानदार गीत और उसके खूबसूरत सी यादें। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर भी आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आएंगी प्रीति त्यागी और उसके बाद 3 आपकी और मेरी मुलाकात होगी प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज में। तो अभी बहुत सारे रंग हैं हमारी इस फिल्मी दुनिया के, बहुत सारे रस हैं जो आप तक पहुंचाने। जुड़े रहिए आकाशवाणी केंद्र प्रस्तुत चैनल के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई नुक्ता नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए, नीज आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नजर को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वजीर आजम के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निजाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निजाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने यह ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आईन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर मुमताज माहिर तालीम बसीरत अफरोज मुफक्किर और

0: अवर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे, जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है, जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है, ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का इहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जिमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हल्के, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हल्के के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरिब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अवी तंजीमें, सारिफिन, तहफुजाती हुक्काम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिक फरीकैन यकजा होंगे और सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलों पर बातचीत करेंगे। माहरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर ताउन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफार्म है। सारिफिन उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफुज से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफिन के तहफुज की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबेन तबादला ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मेक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विम्बल्डन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कैरेलोना मोंकोवा प्री क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया की अपनी साथी खिलाड़ी और साबिक चैंपियन बारबोरा को हराकर तीसरी मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका भी पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کے 6 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس سے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کو تقویت ملے.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है।

0: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

समर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के

जी दोस्तों, अभी आपने सुना बैंड बाजा बारात से ये खूबसूरत सा गीत। वैसे रणवीर सिंह की ये पहली फिल्म, जिस फिल्म से ये गाना हमने अभी आपको सुनवाया, रणवीर सिंह जिनका जन्म हुआ 6 जुलाई सन 1985 को मुंबई में, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपने जुनून के दम पर यशराज फिल्म्स की बैंड बाजा बारात से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो लोगों को लगा कि भाई ये तो कोई दिल्ली का लड़का है जो कि बिल्कुल दिल्ली के लड़के की असली एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो एक्टिंग थी इतनी नेचुरल कि हर किसी को लगा कि भाई ये तो दिल्ली का ही लड़का है। लेकिन रणवीर ने बिल्कुल सबको गलत साबित किया। वो जिस रोल को भी उन्होंने किया उस रोल में ऐसे ढले कि जैसे वो किरदार सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया है। और उनकी पहली फिल्म के पहले शॉट से ही ये साबित हो गया था कि भाई ये जो है ये लंबी रेस का घोड़ा है। और वाकई में उन्होंने ऐसी फिल्मों में काम किया, चाहे वो फिल्म हो गोलियों की रासलीला, रामलीला, जिसमें वो एकदम देसी रोमांस करते हुए नजर आए, वहीं बाजीराव मस्तानी में मराठा योद्धा का किरदार उन्होंने निभाया और काफ़ी ज़्यादा दमदार आवाज़ और मजबूत पर्सनालिटी के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया। या फिर हम बात करें पद्मावत की, जिसमें उन्होंने खूंखार और सन की अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया। या फिर धुरंधर फिल्म, जिसमें उन्होंने क्या ही खूबसूरत किरदार निभाया है एक स्पाई का, और वाकई में किरदार में उन्होंने पूरी तरह से जान डाल दी। वैसे खिलजी के किरदार के लिए भी कहा जाता है कि रणवीर ने खुद को हफ्तों तक एक कमरे में बंद रखा था और यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर आए तो लोग उनसे वाकई में नफरत करने लगे और उनकी एक्टिंग के भी दीवाने हो गए। तो लीजिए इस कार्यक्रम की अगली कड़ी सुनते हैं अगला गीत विशाल डडलानी की आवाज़ में, ये खूबसूरत सा गीत बाजीराव मस्तानी से।

रणवीर सिंह. जी हाँ, रणवीर सिंह आज के हमारे इस कार्यक्रम के जो हीरो हैं वो हैं रणवीर सिंह. रणवीर सिंह ने काफ़ी लंबे वक्त के बाद में धुरंधर फिल्म में काम किया. बिखरे बाल, बिखरे बालों के साथ में वो जब इस फिल्म में नज़र आए तो शुरुआत में समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है. रणवीर सिंह को अगर हम देखें तो वो अब जैसे शुरुआती फिल्मों में उन्होंने किरदार जो निभाए थे, जो हमारे पास वाले एक लड़के की छवि उन्होंने निकाली, जिस तरह से कोई भी लड़का मस्ती मजाक करता हुआ घूमता है उस तरह का किरदार उन्होंने निभाए, लेकिन नहीं, अब रणवीर सिंह उस पड़ोस वाले लड़के के किरदार से हट चुके हैं, बल्कि अब वो एक ऐसे किरदार में आ चुके हैं जो कि पूरी की पूरी लियारी की सारी बिरयानी को अकेले चट कर जाते हैं. और वाकई में बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही धुरंधर, और इसकी जो सफलता है उससे हम ये ज़रूर कहेंगे कि हाँ, वाकई में बहुत अच्छा काम उन्होंने इस फिल्म में किया है और बखूबी वो फिल्मों में कर रहे हैं. कहेंगे कि हम संजय लीला भंसाली ने जब 2013 में उन्हें पहली बार साइन किया अपने साथ गोलियों की रासलीला, रामलीला फिल्म में, तो उस फिल्म के बाद उनके किरदार ने एक अलग तरह से शेप लेना शुरू किया. उससे पहले वो बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के किरदार जो थे वो निभाया करते थे, लेकिन उस फिल्म के बाद उन जो और डायरेक्टर्स थे वो भी उनको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगे थे और उनके लिए स्पेशल किरदार निकालना उन्होंने शुरू किया कि हाँ, ये लड़का जो है इसके अंदर वो दम है, वो कुव्वत है कि वो इस तरह के किरदारों को निभा सकता है. और वाकई में रणवीर सिंह सबकी उन सोच पर पूरी तरह से खरे उतरे.

अलौकिक चंचोलिया हमारे साथ जुड़े हैं, और नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनौरी तेलावाला उत्तराखंड से। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा के साथ। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और

अलौकिक चंचोलिया हमारे साथ जुड़े हैं, और नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान बाबूजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनौरी तेलावाला उत्तराखंड से। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा के साथ। अमर रमेश कुमार खत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री ली, और पॉकेट मनी निकालने के लिए उन्होंने स्टारबक्स में भी पार्ट टाइम जॉब किया था। हालांकि उनका असली प्यार हमेशा से एक्टिंग था। बहुत लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हम तक पहुंचाई, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इन खूबसूरत जानकारी के लिए। संबलपुर कांकेर से हमारे साथ जुड़े हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव के साथ, सुधाकर, राजेश यादव, प्रशांत, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सर्वत, सानवी, हर्षदा हमारे साथ जुड़े हुए ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, सोपान ताइडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचा हीरामणि वर्मा जी ने दतरंगी भट्टापारा से, और ग्राम लोहागढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से हमारे पास ये संदेश आया है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत जी हमारे साथ जुड़े हैं, भारत कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, उसको पहुंचाने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया के साथ। ये जो अगला संदेश है इसको पहुंचाने वाले हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना और सीमा के साथ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, डिविलिस डिकैस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े, और कुछ संदेश और हैं। चिरमिरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ, राम सौदा, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला जो संदेश है उसके साथ जुड़े हुए हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी के साथ में। और ये जो अगला संदेश है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू के साथ, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी मस्किन जी का हमारे साथ हमारे पास संदेश है, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्किन जी। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमारे ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमने बात की

आपके लिए हम लेकर आते हैं इस वक्त प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, जिसमें पुराने गानों का रस आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, 1950 का दशक हो, 1960 का दशक हो, ये वो दशक था जब जितने भी गीत बने हैं वो आज भी वही ताजगी रखते हैं जब वो उस वक्त रखा करते थे। तो आज भी कुछ ऐसे ही गीत हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं उस स्वर्णिम युग से, उस दौर से, जो ऐसे गीत जो कि किसी खास वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट को केंद्र में रखकर बनाए गए थे। कभी उनमें बांसुरी की मिठास नजर आती है, कभी हारमोनियम की सादगी, कभी ढोलक की थाप और कभी सितार की रुनझुन। ये गीतों ने संगीत को एक नई पहचान दी। इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूँ आज मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आपको लिए चलूंगी 1950 के उस दशक की उन गीतों की दुनिया में जहाँ जिनकी आत्मा किसी ना किसी वाद्य यंत्र में बसती है। तो सबसे पहले इस गीत को सुनिए, उसके बाद इस गीत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या खासियत है इस गीत की, और यदि आप समझ जाएं तो आपको क्या करना है, मेल भेजना है। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। फिलहाल सुनिए ये खूबसूरत सा गीत।

खूबसूरत सा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में, और इसमें जो मुख्य वाद्य थे वो थे सितार और तबला। इस गीत का संगीत दिया था नौशाद साहब ने, और इस गीत की विशेषता पता है क्या है? ये राग पर आधारित गीत है और इसमें सितार और जो राग है उसकी एक अद्भुत जुगल बनती है। ये फिल्म कोहिनूर का गीत अभी आप सुन रहे थे, और अगला गीत जो हमने लिया है आपके लिए चुनकर, वो हमने लिया है फिल्म सीआईडी से, रफ़ी साहब और गीता दत्त की आवाज़ है, और इसमें जो वाद्य यूज़ किया गया है वो ट्रम्पेट और सैक्सोफोन है। इस गीत का संगीत ओपी नैयर साहब ने तैयार किया है, और ये पश्चिमी वाद्यों का एक शानदार इसमें इस्तेमाल आपको नज़र आएगा, जो उस समय उस दशक में बिल्कुल नया अंदाज था। सुनिए इस गीत को।

ये है बॉम्बे मेरी जान, लेकिन ये है दिल्ली। यहाँ से आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ से ये प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज। आपके लिए चुनकर लाते हैं हम इसमें वो गीत जो हमेशा दिल को छूते थे, छूते हैं और छूते रहेंगे। आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और अगला जो गीत मैंने चुना है आपके लिए, इसमें शामिल किया गया है हवाईयन गिटार को। सुना है आपने, सुना होगा आपने गीत, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। इस गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, एस डी बर्मन साहब का संगीत है, और इस गीत की खासियत यह है कि इसमें गिटार की मुलायम धुन रात की रोमांटिक फिजा को जीवंत कर देती है। हालांकि रात का समय नहीं है, लेकिन ये गीत इतना प्यारा है कि हमारा मन करा कि आप तक ये गीत हम पहुंचा दें। फिल्म जाल से ये गीत हमने चुना है, सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत कैसा लगा, सच बताइएगा। आपके संदेश भी हम तक पहुंच रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आपको उस दौर के गीत दिल से पसंद हैं। अगला जो गीत हमने आपके लिए चुना है, नागिन फिल्म से हमने इस गीत को लिया है और लता जी की खूबसूरत सी आवाज़ है और जानते हैं कि इसमें मुख्य वाद्य क्या यूज़ किया गया था। ये क्लेबियोलिन यानी कि जो बीन होती है उससे इस गीत की धुन तैयार की गई थी। संगीत हेमंत कुमार साहब का था और बीन धुन सबसे प्रसिद्ध बीन धुन मानी जाती है। जब भी आपने भी कई बार नकल करी होगी, क्योंकि हम बचपन में करते थे, गले में यूं ऐसे हाथ लगा लगा कर और बीन की धुन निकालते थे। बीन की धुन अगर आपने सुनी जब भी, तो आपने इसी गीत में सबसे पहली बार सुनी होगी। सुनते हैं इस गीत को।

और अगला जो हमने वाद्य यंत्र चुना है वो है ढोलक। जी हाँ, हर घर में मिलने वाला एक ऐसा वाद्य जिसे हर कोई बजाने की कोशिश करता है। कुछ तो उसे बहुत अच्छे से बजा लेते हैं, लेकिन कुछ कोशिश करते ही रहते हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इस गीत को हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना से, और विशेषता इस गीत की ये है कि इसमें ढोलक की थाप पूरे गीत को लोक की जैसा रंग देती है। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत लता दी की आवाज़ में।

फिलहाल तो हम आपके जो मेल हैं उनको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ढूंढ ढूंढ के। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता जी हैं हमारे साथ, समडील नवापारा से मुकेश

के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है ये अजीत भापसर जी का ही है। लिख रहे हैं कि आज कुछ नया अंदाज है और हटके हम प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है अजीत जी कि हम वो गीत आप तक पहुंचाएं जो सीधे दिल में उतर जाए। हमारे साथ तहसील बरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी जुड़े हुए हैं और आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, शुक्रिया आप सभी का। और अगला जो हमने वाद्य यंत्र चुना है वो है पियानो। एसडी बर्मन साहब का संगीत है और पियानो की तो विशेषता आप जानते ही हैं। पियानो की जो जैज शैली है वो आपको इस गीत में सुनाई देगी जो इस गीत को एक आधुनिक रंग भी देती है। फिल्म बाजी से ये गीत हमने चुना है गीता दत्त की आवाज़ में।

तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे गीत जो 1950 के दशक के सदाबहार गीत थे, जिनमें कोई ना कोई वाद्य यंत्र सिर्फ साथ नहीं देता बल्कि गीत का मुख्य पात्र भी बन जाता है। और यही वजह है कि इन गीतों को सुनते ही कभी बीन की धुन कानों में गूंजती है, कभी सितार की झनकार और कभी हारमोनियम की सादगी दिल को छू जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आज का आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगला एक खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ और अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैं चिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: मुझे लगता है कि शायरी जो है एक खुदादाद सलाहियत है.
1: बिल्कुल है, बेशक है, ऑफिस दिए.
0: कब आमद होने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो चलिए, तो आपकी शायरी की बात हो गई आलोक साहब
1: जी.
0: अब बात करते हैं आपके बचपन की.
1: जी,
0: बचपन जो बेहद खूबसूरत होता है.
1: जी,
0: बचपन जो हमेशा हमारी यादों में रहता है.
1: बेशक.
0: तो आपकी भी बहुत सारी ऐसी यादें होंगी बचपन की. फरुखाबाद की सरजमी, घर का माहौल, और फिर इब्तदाई जिंदगी ने आपकी शख्सियत और शायरी को किस हद तक मुतासिर किया, ये आपसे जानना चाहेंगे. और दूसरी बात जो हमें लगती है, कई बार यूं भी लगता है कि घर का जो माहौल था वो शायरी का नहीं था, उसे हम अदब से नहीं जोड़ सकते.

0: जवाब भी होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको दोनों सवालों का जवाब दे पाऊं। मेरी जो पैदाइश है वो फर्रुखाबाद जिले में हुई
1: जी।
0: वहाँ कायमगंज तहसील है जहाँ मेरी ननिहाल थी, वहाँ मेरी पैदाइश हुई, उसके बाद परवरिश फर्रुखाबाद में हुई। फर्रुखाबाद जो है वो शायरी के एतबार से बड़ी जरखेज जमीन है वहाँ की। गालिब साहब भी वहाँ कुछ दिन कायम किए थे और उनके हम असर एक हुआ करते थे, लाला माधवराम जौहर
1: जी।
0: जैसा कि आपने कहा कि मेरे परिवार में कोई शायर या अदबी माहौल नहीं था, ऐसे ही लाला माधवराम जौहर साहब के यहाँ भी कोई शायर नहीं था
1: जी।
0: वो पूरा का पूरा उनका जो है वो बिजनेस फैमिली थी। लेकिन उनके जो कुछ शेर हैं जो कि आज जरबुल मसल बने हुए हैं, जिनमें एक शेर है कि भांप ही लेंगे इशारा

0: परिवार में कोई शायर या अदबी माहौल नहीं था. ऐसे ही लाला माधोराम जौहर साहब के यहाँ भी कोई शायर नहीं था.
1: जी
0: वो पूरा का पूरा उनका जो है वो बिजनेस फैमिली थी. लेकिन उनके जो कुछ शेर हैं जो कि आज जरबुल मसल बने हुए हैं, जिनमें एक शेर है कि भांपी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, भांपी लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं.
1: वाह क्या बात है. बिल्कुल
0: ऐसे ही एक शेर है उनका कि नालाए बुलबुले शायदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरी बारी आई.
1: और वाकई आपकी बारी अब आ चुकी है. बिल्कुल.
0: हाँ तो मैं उसी जमीन से हूँ. उस जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े शायर हुए और बहुत सारे मीरो गालिब ने वहाँ पे कायम किया.

0: मैं एक दोस्त के घर में रहते थे, वहाँ कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब थे
1: जी।
0: शुरुआत में उनसे मैंने अपनी कविताएं दिखाई, उन्होंने कुछ समझाया, कुछ इशारे किए। फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी करने गया
1: जी।
0: मैंने बीएससी वहाँ से किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। साहित्य से मेरा कोई तालीम मेरी नहीं रही। श्रीवास्तव सर ने मुझे एक चिट्ठी दी थी, वहाँ एक बड़े कवि थे, मुझे अभी एकदम से उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझे हाथ पकड़ के ले गए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे उन्होंने पहुंचा दिया आकाशवाणी तक। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ आकाशवाणी से वो आज तक जारी है,
1: जारी सारी है।
0: और बिल्कुल बिल्कुल, और लगातार मैं जुड़ा हूँ आकाशवाणी से। आपको जान के हैरत होगी शायद कि मेरी जो पहली नौकरी थी मुझे मिली थी मुझे पढ़ते हुए
1: जी जी,
0: बीएससी करते ही मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें एक ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का भी
1: जी
0: नौकरी थी।
1: ये जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया लखनऊ यूनिवर्सिटी का
0: जी,
1: तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एक अदबी माहौल था
0: जी,
1: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ एक बहुत अदब शनास लोग रहा करते हैं, पढ़ा करते हैं, पढ़ाया करते हैं, तो आपकी जो तख्लीकी जिंदगी है
0: जी,
1: उस पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का कितना अहम हम रोल मान सकते हैं?
0: हाँ, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी हमारे समय में ऐसा कोई बहुत अदबी माहौल तो मुझे दिखा नहीं और ना ही मेरा कोई ऐसा कहीं आना जाना था, लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं थी वहाँ पे और खास तौर से आकाशवाणी उसने जरूर मुझे मेरे अदब के शौक को, मेरे जो है शौक को बरकरार रखा और उसमें इजाफा किया, मेरी मालूमात में इजाफा किया और मैंने कुछ अच्छा सीखा और अच्छा किया।
1: अब तक की आपकी जिंदगी में ऐसी बहुत शख्सियात रही होंगी
0: जी,
1: जिन्होंने आपके ऊपर एक गहरा असर भी डाला होगा, और हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता है कि उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और उनकी कोई बात ऐसी जरूर होती है जो अक्सर दिल पर असर भी हो जाती है। और यकीन मानिए जिस तरह से आज हमें आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है और यकीनन हमारे सामईन को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो भी आपको जानना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे, तो यकीनन एक लंबा सफर रहा है आपका अदब की दुनिया में, कई सारे मुशायरों में आप सुने जाते रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं, तो कोई और ऐसी शख्सियत रही जिसने आप पर गहरा असर डाला हो?
0: जी, मुझे लगता है कि हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग हैं जिनको पढ़ के मुझ पे बहुत असर हुए, लेकिन मिल के असर होने वाली बात अगर देखें तो मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े लोग कहा जाता है ना खजूर की तरह हैं
1: जी,
0: जिनसे छाया और फल दोनों ही बहुत दूर होते हैं
1: जी।
0: मेरे जीवन में जो दो तीन लोग जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, कि वो मैंने जैसे पहले बताया कि श्री कृष्ण स्वरूप श्रीवास्तव साहब थे जिन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा शुरुआत में, और जब मैंने शायरी शुरू की, गजल की तरफ मैं चला और गजल को मैंने बाकायदा उसका जो बहरो अजान है और वो सब सीखा, क्राफ्ट सीखा गजल का, वो था 2013 में बरेली में पोस्टेड था, और मैंने 93 के बाद लगभग कुछ भी नहीं लिखा।
1: अच्छा,
0: हाँ।

0: मोबाइल पे भी लिखा जा सकता है या किसी पर्ची पे भी या किसी नोटपैड पे भी। फाइल को साइन करते हुए भी एक शेयर हो सकता है और मीटिंग के दौरान भी एक शेयर हो सकता है। हालांकि ये खतरनाक होता है कि मीटिंग के दौरान आप का ध्यान कहीं और चला जाए, लेकिन कभी कभी एक रिलैक्सिंग माहौल भी होता है, एक समय ऐसा वक्फा आता है जहाँ आप कुछ सोच सकते हैं। और शायरी क्या है, सामने से देख के मुझे जो लगता है मैंने जो किया अब तक, मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था तो उस समय भी मैं लोगों को ऑब्जर्व बहुत करता था, शायद इसी वजह से मैं शायरी और ये अदब की तरफ मुड़ा हूँ। तो जब भी मैं लोगों को देखता हूँ तो मैं बहुत गौर से देखता हूँ लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वहीं से कोई शेर उपजता है उनकी बातों से, उनकी हरकतों से, और फिर मैं उसको लिख लेता हूँ। देखिए शायर जो है वो लोगों के समाज की अक्कासी करता है, कभी कभी कुछ वो रोशनी देता है, वो एक जुगनू की तरह होता है जो कभी रास्ता दिखा तो देता है लेकिन आपको हाथ पकड़ के नहीं ले जा सकता, वो आपको खुद करना होगा। तो मेरा भी ऐसा ही है कि मैं कभी कोई बात होती है जो समाज में जिसको मुझे लगता है कि यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तो हम उस बात को इस तरह से दिखाना चाहते हैं जिससे कि लोग खुद सोचने पे मजबूर हो जाएं, और जो परिवर्तन है, जो चेंजेस हैं, जो लाने हैं या जो काम करने हैं वो लोगों को खुद करने पड़ेंगे।
1: बिल्कुल, एक दौर ऐसा था जब मुशायरे बादशाहों और जो नशस्तें थी वो खास महफिलों में ही आरास्ता की जाती थी।
0: बिल्कुल,
1: और वक्त बदलता चला गया, आज हम डिजिटल हो गए हैं और आज एक शायर की जो रसाई है आम आदमी तक बहुत आसान हो गई है
0: जी।
1: तो आपकी नजर में क्या लगता है कि वो दौर ज्यादा खूबसूरत था या जो डिजिटल

0: और पुराने तो खैर ही अच्छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक और सवाल ये जानना चाहेंगे कि आप प्रशासनिक सेवा में रहे, क्लास वन ऑफिसर हैं आप, तो आपने क्यों ऐसा सोचा कि मुझे शायरी करनी है, या कोई ऐसा आपका खास कोई ऐसा पहलू रहा जिंदगी का कि आपको लगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, या कोई ऐसा खास वाकया जो आपकी जिंदगी का खास रहा हो जो शायरी से भी जोड़ता हो आप?
0: मैंने अभी आपको शायद बताया था थोड़ी देर पहले कि मैं जब स्कूल में था

0: हैं। मैं कहता हूँ किस्मत कुछ भी नहीं है, अगर आपने मेहनत की है तो आपको फल मिलेगा, उस फल का आपके लिए आपको मेहनत करनी जो भी आप चाहते हैं। किस्मत आपके हाथ में नहीं, अगर होती भी है तो आपके हाथ में तो है नहीं, अगर है तो ठीक है, अच्छी बात है,
1: बिल्कुल,
0: अगर है तो आपको मिल जाएगा किस्मत का सहारा, लेकिन आपको मेहनत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल, कहते भी हैं मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीरें, जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। बिल्कुल,
0: तो जो भी आपको करियर चुनना है उसको चुनिए और उसकी तरफ 100% दीजिए। अगर आप 100% देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मंजिल मिलेगी। और जहां तक आपके शौक की बात है तो एक दो शौक आपके जरूर होने चाहिए। मैं देखता हूँ यूपीएससी में भी, हम लोग जब पढ़ते थे तब भी कहा जाता था कि यूपीएससी में जो इंटरव्यू होते थे उसमें जरूर पूछते थे कि आपकी हॉबी क्या है।

0: 听众朋友们，接下来我们播送 Gopal Babu 唱的一首歌曲。
1: ये आवाज है कुमाऊनी लोकगीतों के स्तंभ गायक गोपाल बाबू गोस्वामी की। इस करुण स्वर में विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अपने प्रिय की याद में पहाड़ी मनखी का मन झुलस रहा है। रोजगार के लिए उसे अपने घर गांव से दूर आना पड़ा है। ऐसे में विरह के ये गीत उसके मन को कुछ हल्का करते हैं। गीत गाते हुए उसे अपनी प्रिय की इतनी याद हो आती है कि उसे हिचकी आने लगती है।

0: खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगे मेरे सहयोगी
2: संचित जैन।
1: मैं और संचित आपको इस आधे घंटे में खेलों के सफर पर लेके चलेंगे। तो जिनके खेल गतिविधियों को हम शामिल करेंगे उसमें शामिल होगा क्रिकेट,
2: फुटबॉल वर्ल्ड कप,
1: साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ पर टेनिस की खबरों की भी।
2: बिल्कुल, विंबलडन 2026 जोरों शोरों से चल रहा है, उसकी बात करेंगे और बात करेंगे ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन जो कि इटली में चल रहा है।
1: बात होगी रेसलिंग की भी
2: और फीबा एशिया क्वालिफायर्स यानी बास्केटबॉल की भी।
1: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सबके पसंदीदा खेल T20 वर्ल्ड कप की और साथ साथ क्रिकेट की, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो महिलाओं का खेला जा रहा था उसमें हमें मिल चुका है विजेता और विजेता बनी है ऑस्ट्रेलिया की टीम।
3: Going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of cricket, Australia have not just claimed their seventh World T20 title.
1: करीब 24 दिनों तक चले रोमांच, रिकॉर्ड उलटफेर और शानदार मुकाबलों के बाद आखिरकार महिला क्रिकेट को अपना नया विश्व विजेता मिल गया। क्रिकेट के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर 7वीं बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया।

0: विश्व कप की शुरुआत से लेकर फाइनल तक क्रिकेट प्रेमियों को हर दिन नए रोमांच देखने को मिले। कहीं युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीता तो कहीं अनुभवी खिलाड़ियों ने बड़े मंच पर अपनी क्लास दिखाई। पूरे टूर्नामेंट में कई करीबी मुकाबले हुए, कई रिकॉर्ड बने और कुछ दिग्गज टीमों को अप्रत्याशित हार का सामना भी करना पड़ा। टूर्नामेंट के दौरान मेजबान इंग्लैंड ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने पूरे अभियान में अपना दबदबा बनाए रखा और एक भी मुकाबला गवाए बिना फाइनल में जगह बनाई। ये लगातार शानदार प्रदर्शन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हुई। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। कप्तान नेट सीवर ब्रंट ने नाबाद 58 रन और फ्रेया कैंप ने नाबाद 44 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए 5वें विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की प्रभावी गेंदबाजी आक्रमण ने इंग्लैंड को इससे बड़े स्कोर तक पहुंचने नहीं दिया। 151 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भले ही लड़खड़ा गई हो, लेकिन इसके बाद भी फीबी लिचफील्ड और बेथ मूनी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी हुई। लिचफील्ड ने 48 रन बनाए जबकि बेथ ने 49 गेंदों पर 64 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। अंत में एलिस पेरी और एशले गार्डनर ने टीम को 17.1 ओवर में जीत दिलवाकर ऑस्ट्रेलिया को विश्व विजेता बना दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने एक और इतिहास रच दिया। टीम ने 2009 से अब तक खेले गए संस्करणों में 7वीं बार ट्रॉफी अपने नाम की है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और 2023 में भी चैंपियन रह चुकी है। वहीं इंग्लैंड ने 2009, वेस्ट इंडीज ने 2016 और न्यूजीलैंड ने 2024 में एक एक बार ये खिताब जीता है। इस विश्व कप की सबसे बड़ी उपलब्धियों में ऑस्ट्रेलिया का पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहना भी शामिल रहा। कप्तान सोफी मोलिनियो की अगुवाई में टीम ने हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में शानदार संतुलन दिखाया।
1: It's been the most amazing day. I don't know, to have walked away with, you know, World Cup under our arms, in front of nearly 30,000 here at Lord's. It was an incredibly special day. And yeah, I'm just so proud of the group. I think the way that we've played all tournament, and then being able to do it on the biggest stage today, it's just, you know, a true testament to the character of the group.
0: वहीं इंग्लैंड के लिए भी नेट सीवर ब्रंट ने कप्तान के रूप में बेहतरीन नेतृत्व किया और पूरे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी से टीम की रीढ़ बना के रखी।
2: You know, the best two sides were in the final, and Australia bowled really well to really restrict us and not let us play too freely. I suppose, well, we didn't have enough runs in the end. I suppose when they have such a long batting lineup, you'd always ask the openers to go and take on the game, which they did brilliantly. We were outplayed today.
0: ये विश्व कप सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं रहा, बल्कि महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता प्रतिस्पर्धा का भी प्रतीक बना। दर्शकों की शानदार मौजूदगी, रोमांचक मुकाबले और खिलाड़ियों का जज्बा इस बात का संकेत है कि महिला क्रिकेट अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और आकर्षक हो चुका है। इस पूरी जीत पर पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर और कोच वैशाली माथुर कहती हैं,
3: ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आउटस्टैंडिंग करी है उन्होंने और वो लाजवाब रही भी है। मूनी है, सोफी है, पेरी है, कोई ना कोई प्लेयर उनका रहता है और वो एक टीम के साथ एक एकजुट होके एक दूसरे को कवर करके चलते हैं और वो एक टीम वर्क दिखाते हैं। वहीं अगर इंग्लैंड की बात करूं कल के मैच की, तो कल के मैच में अगर हमने देखा पावर प्ले के अंदर जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है, वो उस पावर प्ले का उतना उपयोग उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि वहां पर 8 ओवर्स में उनके 64 रन थे एंड वहां पर 8 ओवर के अंदर उनके अगर हम हर ओवर के हिसाब से देखें तो 100 रन के ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, आप क्वार्टर फाइनल मैच नहीं खेल रहे और वो भी एक उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं जो 6 बार रह चुकी है और इस बार 7वीं बार बनी है। लेकिन उसके साथ उनकी स्ट्रेंथ भी देखी गई और क्या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग करी है फर्स्ट 10 ओवर्स में जो उन्होंने रोके हैं ऑस्ट्रेलिया टीम ने इंग्लैंड के, वो अमेजिंग थे। एंड उसके बाद लग रहा था कि जब सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने जैसे बॉलिंग करने के लिए वो आए, पहली बॉल पे जो

0: उन्होंने आउट मांगा था, बट वो दिया नहीं गया, वो निराशाजनक रहा। लेकिन उसके बाद एक मोमेंट भी इंग्लैंड की साइड से या स्पिनर की साइड से इंग्लैंड के ऐसा कहीं नजर नहीं आया कि उन्होंने कहीं से मैच को फंसाया हो या रोकने की कोशिश करी हो, कहीं भी एक वो मोमेंट आया नहीं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर ने वो हाथ खोलने का, उनको टिकने का, बॉलर्स को टिकने का वो मौका ही नहीं दिया।
1: अब बात करें अगर भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम टूर्नामेंट के लीग मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से हार कर बाहर हो गई थी। लेकिन भारतीय महिला टीम की गेंदबाज श्री चरणी ने इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 14 विकेट चटकाए और टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक का आधिकारिक कोटा हासिल कर लिया।
0: यंग प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल रही है और ऐसे ही उनका एक्सपीरियंस अब गेन करती रहे, अब वो उनके फ्यूचर के लिए बेटर होगा। और यहाँ पे हमारी इंडियन टीम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि दीप्ति शर्मा भी एक फर्स्ट नंबर पे, जिन्होंने फर्स्ट 5 विकेट्स लिए हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर, एंड वो भी अभी टॉप स्कोरर पे है इस वक्त, विकेट्स टेकर है।
1: 24 दिनों तक चले इस क्रिकेट महाकुंभ का समापन ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत के साथ हुआ और एक बार फिर दुनिया ने देखा कि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा अब भी कायम है। 7वीं बार विश्व चैंपियन बनकर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास के पन्नों में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। व्हाट अ स्टोरी, वाकई एक स्टोरी ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को यहाँ पर मजबूत स्थिति में शुरू से बनाए रखा। और कहते हैं कि जब किसी चीज की शुरुआत अच्छी होती है तो अंत अपने आप ही अच्छा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, और ऐसा ही अंत जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फुटबॉल के ग्राउंड में भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फीफा वर्ल्ड कप की, जहां पर अब जो टीमें हैं वो लड़ रही हैं आगे के चरण के लिए। क्या है पूरी अपडेट, चलते हैं संचित के पास।

फुटबॉल के महाकुंभ यानी फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है में कल दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच 5 बार विश्व विजेता ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला गया। नॉर्वे ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। अर्लिंग हालैंड ने 79 और 90 मिनट में गोल मारकर नॉर्वे को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। ब्राजील को 100 मिनट में पेनल्टी मिली जिसको नेमार ने खूबसूरती से गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए, परंतु समय नहीं बचा और नॉर्वे ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फर्स्ट हाफ में ब्राजील को एक और पेनल्टी मिली थी लेकिन ब्रूनो गिमराइस गोल नहीं कर पाए। इस जीत के साथ नॉर्वे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है और नॉर्वे के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जहां तक ब्राजील की बात करें तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 1990 के बाद ये पहली बार है जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इस हार के साथ ब्राजील का नॉर्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और खराब हुआ। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ऐसा अकेला देश है जिसके साथ ब्राजील कई बार खेला है लेकिन हरा नहीं पाया है। ब्राजील नॉर्वे से आज तक 5 मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 2 मैच हार गए हैं और 3 बार मैच ड्रॉ रहा है।

0: you belong. चलिए अब बात करते हैं कल रात के दूसरे रोमांचक मैच की, जो कि मेक्सिको और इंग्लैंड के बीच मेक्सिको सिटी में खेला गया.
1: Saka. Because Saka has Kane, but Bellingham coming in. England lead in the end, Saka.
0: ये मैच शुरुआत से ही काफी तेजी और रोमांच भरा रहा. इंग्लैंड के जूट बेलिंगम ने 90 सेकंड में दो गोल मारकर इंग्लैंड को 2-0 की बढ़त दिलाई. जैसे ही इंग्लैंड को लगने लगा कि उनकी क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की होती दिख रही है, मेक्सिको के किनोनेस ने 42nd मिनट में हाफ टाइम से पहले गोल मारकर मैच 2-1

एक पार ले आए। सेकेंड हाफ में बस 9 ही मिनट बीते थे जब इस मैच में एक और दिलचस्प मोड़ लिया। 54th मिनट में इंग्लैंड के क्वांसा को एक हैवी टैकल के चलते रेड कार्ड दिखाया गया। इंग्लैंड के अब बस 10 प्लेयर फील्ड पर बचे थे और मेक्सिको को लगा कि यही मैच को बराबरी पर लाने का अच्छा मौका है, परंतु 60th मिनट में मेक्सिको के गोलकीपर ने इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन को पेनल्टी बॉक्स में गिरा दिया और इंग्लैंड को पेनल्टी मिल गई। इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन आगे आए और एक शानदार पेनल्टी के साथ गोल मारकर इंग्लैंड को मैच में 3-1 की बढ़त दिलाई। जैसे ही ये लगने लगा कि इंग्लैंड ये मैच जीत जाएगा, मेक्सिको के राउल हिमनेस ने 69th मिनट में पेनल्टी मारकर मैच को 3-2 पर ले आए। अगले 20 मिनट तक मेक्सिको कोशिश करता रहा लेकिन गोल नहीं कर सका। इस जीत के चलते इंग्लैंड फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है और उसका अगला मुकाबला नॉर्वे के साथ 11 जुलाई को होगा।

वहीं आज खेले जाने वाले मैचेस पर नजर डालें तो राउंड ऑफ 16 का सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला आज डैलस स्टेडियम में पोर्चुगल और स्पेन के बीच खेला जाएगा। स्पेन की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले फ्रांस और अर्जेंटीना के साथ स्पेन भी प्री टूर्नामेंट फेवरेट थे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। स्पेन की टीम में फुटबॉल जगत के सुपरस्टार्स भरे हुए हैं और स्पेन ये जरूर चाहेगा कि इन बड़े मैचों में उनकी टीम के बड़े खिलाड़ी आगे आए और शानदार प्रदर्शन दिखाए। सारी नजरें स्पेन और बार्सिलोना के खेलने वाले चाइल्ड सेंसेशन लमीन यमाल पर होगी। सुपरस्टार्स की बात कर हो ही रही है तो पोर्चुगल कैसे पीछे रह सकता है। लोकप्रिय खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी CR7 पोर्चुगल की तरफ से खेलते नजर आएंगे। CR7 अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वर्ल्ड कप रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। पोर्चुगल में मैन यूनाइटेड के कप्तान और सुपरस्टार ब्रूनो फर्नांडेस और PSG के विटिनिया और जाओ नेवेस रोनाल्डो और पोर्चुगल को क्वार्टर फाइनल तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। स्पेन और पोर्चुगल आपस में 4 बार खेल चुके हैं जिसमें दोनों टीमें एक एक मैच जीते हैं और बाकी 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर आज रात इस मैच पर होगी तो देखते हैं क्वार्टर फाइनल में कौन अपनी जगह बनाता है।

0: 410. Na pia unaweza kutupata kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram @akashivani_air
1: अपनी जात को छुपाने के पैसे के पीछे और दूसरी गली में लिखा है कैसे इस जगत में हमारे भारत देश में इस हिंदुस्तान में कैसे खोटे कर्म

0: अपना बनाया जाता है
1: जी।
0: और जब से नित नए साधन आ गए हैं तो हमारी बहनें भी थोड़ी सी हो सकता है लापरवाह हो गई है
1: जी।
0: हम यही चाहेंगे कि हमारी बहनें जो है वो इस बारे में लापरवाही ना बरते और जो स्वच्छता है उसका अधिक से अधिक ध्यान रखे। जब मौसम बदलता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है, तो ऐसे में जो आहार है वो कैसे हमें स्वस्थ रखने का काम करेगा।
1: हम अभी गर्मी में थे, फिर मॉनसून आया, मॉनसून भी अब हमारा जा रहा है और अब इसके बाद हम थोड़ा सा सर्दी की तरफ जाएंगे
0: जी।
1: तो इस समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि इसी समय पे आपके, क्योंकि जो तापमान होता है कीटाणुओं के लिए बड़ा परिपक्व होता है जिसमें खूब पनपते हैं वो
0: जी।
1: तो इसी समय जैसे मच्छर हैं, मक्खियां बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि उनके पनपने का यही समय होता है। तो इस समय पे हमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ कि ये सब हमें बीमारियां ना हो, तो हमें अपने खाने का बहुत जरूरी ध्यान रखना है
0: जी।
1: तो आपका जो भी आपका सबसे पहले कि आपने ताजा खाना ही उतना ही खाना बनाए जितना आपका इस्तेमाल हो जाए एक बार में, उसको रखे ना बहुत देर तक क्योंकि इन कीटाणु बहुत जल्दी पनपने लग जाते हैं अगर आपने वो खाना रख दिया कि आप सोचे कि रात को खा लें या सुबह खा लें, ऐसा ना करें। तो ये क्योंकि मौसम बदलता मौसम है, इस समय का जो तापमान है मैंने बताया कि जीवाणुओं के लिए जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं कीटाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मक्खी मच्छर हमें दिखाई दे जाते पर सूक्ष्म कीट जो हमें दिखाई नहीं देते तो वो इस समय बहुत जल्दी से आ जाते हैं। मान लीजिए आपने रोटी रख दी, आपने घी लगी रोटी रख दी तो आप अगले दिन तक देखेंगे उसमें हरा हरा आपको धब्बे दिखाई देंगे तो वो फफूंद है, फंगस जिसे बोलते हैं, तो वो पैदा हो जाती है। तो इसीलिए जितना आप खाएं, जितना आप खाना हो उतना ही बनाएं और फिर आपने ध्यान रखना है कि क्या आप खाएं क्योंकि आपका मौसम बदल रहा है। तो हम अभी तक ठंडा पानी पीते थे तो आपको पानी आपका जो तापमान है तो वो आपको जो नॉर्मल तापमान पे पानी होता है उसका सेवन करना शुरू कर दें क्योंकि गला बुखार इस समय काफी चढ़ता है और बुखार जो हमारा ज्यादातर गले से ही होता है
0: जी।
1: तो इस समय ये ध्यान रखना कि ठंडा चीजों का सेवन ना करें
0: जी। आहार
1: जी
0: एक होता है पौष्टिक आहार
1: जी,
0: तो मैं यही बात करना चाहूंगी आपसे कि पौष्टिक आहार क्या है
1: जी। पौष्टिक आहार एक ऐसा आहार जो हमारे पास होता है बस हमें ये पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व है। तो पौष्टिक आहार ऐसा आहार है जिसमें सभी प्रकार के जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं, जो हमारे पांच प्रकार के पौष्टिक तत्व हैं, आपका ऊर्जा है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज है, आपका विटामिन है और पानी, ये हमारे पौष्टिक तत्व हैं। तो एक ऐसा आहार जिसमें ये सब चीजें शामिल हों वो एक पौष्टिक आहार कहलाता है। तो हमें ये मिलता कहाँ से, जैसे ऊर्जा की बात करें तो ये हमें अनाज से, मोटे अनाज,

0: से आपका इनसे मिलता है, या जड़ वाली कंदमूल जैसे आपका आलू है, शकरकंदी है, इनसे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें दालों से, दूध से। अगर हम मांस मछली खाते हैं तो मांस से, मछली से, अंडे से, इनसे प्रोटीन मिलता है। साबुत दालों से, इनसे मिलता है। फिर आपका तीसरा आता है कि खनिज और विटामिन। ये हमें सारे सभी प्रकार के, जो हमारी जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, उन सब में पाया जाता है। तो इनका सेवन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है इन हमारी ऊर्जा और प्रोटीन के साथ, क्योंकि ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देती है
1: जी।
0: तो इनका हमारे भोजन होना बहुत जरूरी। फिर वसा, जो है चिकनाई जिसे हम कहते हैं, जो कि हम घी तेल जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इनमें पाया जाता है, जो कि हमें होता है कि नियंत्रित मात्रा में इनका इस्तेमाल करना, पर लेना जरूर है
1: जी।
0: और उसके बाद आपका पानी। तो ये हमारे सब भोजन में शामिल होने चाहिए, जो कि एक पौष्टिक आहार और संतुलित आहार जो हम बात करते हैं वो पूरा करता है
1: जी। बात जब चलती है आहार की, जब घी की हम बात करते हैं, तो आजकल हर कोई जो है कहता है कि मैं हेल्थ कॉन्शियस हो गया हूँ और घी का जो है वो सेवन मुझे नहीं करना है, या वो जो रोटी पर जैसे हम पहले घी रखकर खाते थे वो बिल्कुल बंद कर दिया है, तो क्या ऐसा करना ठीक है?
0: नहीं, बस ये है कि कोई भी चीज का हम जो सेवन करें बहुत जरूरत से ज्यादा ना करें
1: जी,
0: एक लिमिट में, यानी कि नियंत्रण में करें। अगर आप एक एडल्ट आदमी कहूंगी या एडल्ट महिला कहूंगी, एक दिन में अगर वो 2 चम्मच देसी घी भी खाते हैं उसको कोई नुकसान नहीं
1: जी।
0: तो 2 चम्मच का मतलब है 2 चम्मच, यानी कि आधी कटोरी नहीं, आधी कटोरी लेंगे तो नुकसान
1: जी।
0: तो एक नियंत्रित मात्रा में लिया जाएगा तो बहुत अच्छा। और यही नहीं, सिर्फ वसा में हम कहते हैं कि आपको एक ही प्रकार के घी पे निर्भर नहीं रहना, हमारे भोजन में सभी प्रकार के जो तेल हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए। आपका सरसों का तेल भी इस्तेमाल होना चाहिए, तिल का तेल इस्तेमाल होना चाहिए, या आपका सोयाबीन का तेल है वो इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ में घी भी इस्तेमाल होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सभी, आपने सब्जी आपने तेल में बना ली, घी आपने रोटी पे लगा ली
1: जी,
0: दाल आपने तेल में छौंक दी, इससे होगा कि आपको तीनों प्रकार के तेल, आपको जो वसा है वो मिल गई।
1: ये एक ही दिन में करें या महीने का?
0: ये रोज, ये रोज के खाने में आपको ऐसे करना है
1: जी।
0: हम संतुलित की जब बात करेंगे तो हमें सभी चीजों को शामिल करना होगा, पर थोड़ा थोड़ा।
1: रिफाइंड तेल की हम बात करते हैं, उसमें भी मैंने कई जगह पढ़ा है कि हमें रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता है, तो यहाँ हम क्या कहना चाहेंगे?
0: रिफाइंड तेल आपका क्या है? आपका नाम इसको रिफाइंड दे दिया गया है। ये हमें सब्जियों या हमें उनसे सब्जियों से ही मिलता है, मतलब जैसे आप या तिलहन जो हमारी फसलें होती हैं उनसे मिलता है, या दलहनी फसलें उनसे मिलता है
1: जी।
0: तो आपका जैसे सोयाबीन का तेल है, इसको भी रिफाइंड बोलते हैं, जब तो सोयाबीन हमारा एक, मतलब कह लीजिए दाल है और तिलहन भी है, दोनों है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपका अगर मैं बताना चाहूंगी तो 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो मतलब वैसे भी किया जाए खाने के रूप में, दाल के रूप में भी, पर तेल में भी इसका किया जाता है। ऐसे फिर आपका सूरजमुखी का तेल है, इसको भी रिफाइंड तेल कहा जाता है। आपका जो नारियल तेल है वो भी आपके नियंत्रित मात्रा में, उसमें थोड़ी वसा चिकनाई ज्यादा होती है, पर उसको कहा जाता है कि थोड़ा सा लिमिट में करके खाएं। तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है रिफाइंड तेल का भी अपने भोजन में इस्तेमाल करने से
1: जी। खेत खलियानों में जब हम काम करने जाते हैं, चाहे हमारे पुरुष वर्ग के लोग हैं चाहे हमारे महिलाएं हैं, तो उस समय उनको लगता है कि आहार कुछ अधिक सेवन करना चाहिए, या उनके जो आहार में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो संतुलित भी रहे, पौष्टिक भी मिले, और साथ साथ जो स्वच्छता रखे तो बीमारियों से भी दूर रहे।
0: क्योंकि हमारे काम के आधार पे हमारे खाने की पूर्ति हमें करनी चाहिए
1: जी।
0: जो बहुत ज्यादा काम करते हैं तो उनमें आपकी ऊर्जा और प्रोटीन और वसा इनकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है
1: जी।
0: जो मतलब रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, कोई गृहिणी है कि खाना पकाया, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब तो ये रोजमर्रा के काम होते हैं, तो इसमें हमारा जो जरूरत है वो थोड़ी कम हो जाती है ऊर्जा और प्रोटीन की। ऐसे ही फिर और जो कम काम करते हैं उनका और कम हो जाता है। तो खेत खलिहान में काम करने वाले की बात करें, क्योंकि उनको वो आपका कहेंगे कि शारीरिक काम उनका ज्यादा है
1: जी।
0: तो शारीरिक काम अब जब ज्यादा होगा तो हमें ऊर्जा और प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होगी
1: जी।
0: तो हमें अपने भोजन में अनाज का ज्यादा इस्तेमाल करना होगा, प्रोटीन रिच जो भी चीजें, हमारी दाल हो, चाहे हमारा आपका दूध हो, दही हो, लस्सी हो, छाछ हो, इनका इस्तेमाल हमें ज्यादा करना होगा, ताकि वो जो उनकी जरूरत है एक शारीरिक काम करने की वो पूरी हो सके, जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये सब चीजें जो हम लेके जाते हैं या बनाते हैं तो उसमें स्वच्छता भी साथ में ध्यान आपको रखनी पड़ेगी, सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किस बर्तन में बना रही हूँ। तो जब भी हम रसोई घर में जाएं तो सबसे पहले अपना हाथ साबुन से अच्छे से धोकर जाएं
1: जी।
0: खूब दिखाया जाता है प्रचार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से भी काफी बताया जाता है कि हाथ कैसे धोना है, तो वो सब भी वो जरूर बहुत कहेंगे बेसिक सी चीज है, पर अगर वो नहीं हुई कि 30 सेकंड तक अगर आपने हाथ नहीं अच्छे से साबुन से धोया तो आपके हाथ में कीटाणु रह जाते हैं
1: जी।
0: तो बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत एक गहरा कहेंगे कि वो छोड़ के जाती है छाप,
1: अहम भूमिका निभाती है
0: बिल्कुल। तो इसीलिए इसके साथ में स्वस्थ भी आपने रखना, क्योंकि आपने

0: मेहनत से खाना बनाया और फिर भी आप बीमार पड़ गए, तो सारी मेहनत हमारी केकर में पानी फिर दी कि हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा।
1: जी, और अब बात आती है उम्र पर, क्योंकि जो भी खाना है वो उम्र के अनुसार ही खाया जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके बाद जो बढ़ते हुए बच्चे है वो अलग है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसकी आप देखते हैं कि बढ़वार बहुत तेजी से होती है बच्चे का। जैसे पैदा होने पे वजन मान लीजिए 3 किलो है, तो 6 महीने पे उसका 6 किलो हो जाना चाहिए, 9 महीने पे उसका 9 किलो, यानी कि इतनी जल्दी उसका वजन बढ़ रहा है।
1: जी,
0: तो फिर ऐसे में उनकी यानी कि जरूरत ज्यादा है भोजन की, तो वो तो माँ के दूध से या ऊपर का खाना 6 महीने के बाद हम शुरू करते हैं उससे पूरी करते हैं। उनके भोजन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें उसमें ऊर्जा, प्रोटीन और वसा, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों के भोजन में। उसके बाद जब 5 साल के बाद बच्चा होता है, वो भी बढ़ने वाला बच्चा होता है, तो उनके भोजन में हमें अब ऊर्जा, प्रोटीन और वसा के अलावा हमें खनिज और विटामिन भी शामिल करने हैं उनके भोजन में।
1: जी,
0: ताकि उनकी बढ़वार में कोई रोक ना सके। किशोरावस्था में जब जाता है तो उस समय क्योंकि इनको ये पढ़ाई में भी होते हैं और आपके खेलकूद में भी होते हैं, तो इस समय इनकी जरूरत और बढ़ जाती है। लड़कियों में बात करेंगे अगर तो किशोरियों में, तो इनमें आपके लोहा की यानी कि आयरन की आवश्यकता बहुत ज्यादा हो जाती है। और लड़कों की बात करें तो आयरन और कैल्शियम दोनों की। आयरन जो है आपका सिर्फ खून बनाने का काम नहीं करता, बल्कि आपके जो हम पढ़ाई कर रहे हैं जो उसको याद करने में भी मदद करता है।
1: जी,
0: तो ये बहुत लोगों को नहीं पता, सबको लगता है कि आयरन की कमी है, आयरन सिर्फ हमें खून बनाने के काम करता है। नहीं, आपका आयरन जो है हमारा दिमाग के लिए भी काफी अच्छा रहता है। जैसे जिनमें आयरन कमी होगी तो उनपे याद करने की क्षमता भी कम होती है।
1: जी,
0: तीसरा, आपकी कोई भी स्पोर्ट्स की जो कार्य है वो पूरा नहीं कर पाते अगर आप में आयरन की कमी है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका आयरन और कैल्शियम, और जिसका भोजन में होना बहुत जरूरी है, तो ये जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो इस समय इनके भोजन में ये ध्यान रखना है। फिर वयस्क हो जाता है तो उनका आपका ऊर्जा, प्रोटीन और वसा और आपका खनिज और आपका विटामिन, ये हमारी सामान्य जरूरत पड़ता है। जब उम्र हमारी ढलती है तो हमारी थोड़ी जो मात्रा है ऊर्जा, प्रोटीन की, ये धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब लेना है पर नियंत्रित मात्रा में ही लेना है, क्योंकि इस समय आपको कई बीमारियां होने की भी संभावना रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें धीरे धीरे कम हो जाता है।
1: जब आपने बात की आयरन की,
0: जी,
1: तो जो भी हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके मन में भी एक प्रश्न उठा होगा कि आयरन जो है वो किन किन चीजों में होता है, हम कौन कौन सी चीजें खाएं जिससे कि हमें रोज आयरन मिलता चला जाए।
0: हरी सब्जियां, या आप कहेंगे सब्जियों के पत्ते, फूल गोभी, अब हमारा शुरू हो जाएगा तो उसके पत्ते हम फेंक देते हैं, उसमें आयरन बहुत अच्छा होता है।
1: अच्छा।
0: हम सिर्फ फूल इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: मूली है, मूली के पत्ते अगर हम फेंक देते हैं, मूली इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमने जो फेंक दिया वो आयरन हमने फेंक दिया। अब हम सिर्फ रेशा खा रहे हैं, जो मूली हम सफेद खा रहे हैं। तो ऐसी आपकी जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं इन सब आयरन से भरपूर होती हैं। और इसके अलावा आप छिलका हटा नहीं, छिलके वाला चना, उसमें भी आपका आयरन काफी अच्छा होता है। तो इनका पर इसमें आयरन के साथ मांस में भी पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, पर जो लोग हम लोग क्योंकि शाकाहारी हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में आयरन की कमी अभी भी महिलाओं में बहुत ज्यादा है। लगभग 59% महिलाएं जो हमारी 15 से 45 वर्ष की अभी भी एनीमिया से ग्रसित है। तो इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि एक तो हम लोग शाकाहारी हैं, तो अब उसको हम नहीं बदल सकते, पर हम ये बदल सकते हैं कि हमने हरी सब्जियां खाई पर हरी सब्जियां पचती नहीं है पूरी तरीके से, तो आयरन हमें उतना नहीं मिल पाता। तो उसकी पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी कैसे, आप अमरूद, नींबू, अब मौसम बदल रहा है, अब आंवला शुरू हो रहा है, विटामिन सी का सबसे घनिष्ठ कहूंगी स्रोत है आंवला। किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल करें, चटनी के रूप में, अचार के रूप में, सुखा के, आप चूर्ण बना के, किसी भी रूप में, इस मुरब्बा, कैंडी, किसी भी रूप में कर सकते हैं, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसको हम भोजन में शामिल करें, जब भी हम हरा साग खा रहे हैं या दाल में पालक डाल के खा रहे हैं तो उसमें हल्का सा नींबू निचोड़ लें, तो विटामिन सी आपको क्या करता है कि आयरन को, पाचन को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे 20% अगर मेरा पचता था तो मेरा अब 40% बढ़ेगा।
1: जी,
0: तो इससे फर्क पड़ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, एक और बात, जब हमारे बच्चे हमें बोलते हैं कि ये प्रोबायोटिक फूड खाना है,
0: जी जी,
1: तो कई बार माएं कहती कि भाई पता नहीं कहां से तुम अंग्रेजी के शब्द लेकर आ जाते हो।
0: जी, जी, जी।
1: तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये प्रोबायोटिक फूड अगर की बात की जाती है तो ये क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों लाभदायक है?
0: प्रोबायोटिक कुछ नहीं, आप जैसे हम जो दही जमे, जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया हमारे दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन होते हैं,
1: जी।
0: तो प्रोबायोटिक हमारे दोस्त बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे खाने को पचाने में मदद करते हैं, हमारे पेट को। तो ये हमारा जो हम दही जमा रहे हैं, जो हम लस्सी पी रहे हैं, इन सब में आपका प्रोबायोटिक है, ये प्रोबायोटिक ही है
1: जी,
0: और कुछ नहीं है। और

0: कोई चीज आपको बाजार से लेने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही आपने रोज दही जमाते ही हैं, लस्सी बनाते ही हैं, चाय छाछ बनाते ही हैं, तो इन्हीं का इस्तेमाल करें भोजन में और बच्चों को भी दें तो प्रोबायोटिक ही है वो, तो इसलिए कोई वो नहीं है कि आपने बाजार से खरीद के लाना तो वही प्रोबायोटिक है, आप घर में बना रही इतने सालों से तो वही आपका प्रोबायोटिक
1: जी। कोई भी बच्चा है या बड़ा है वो अगर बार बार खाना मांगने की बात करे तो उस समय पर हमें क्या खाना चाहिए?
0: उस समय पे आपको जो भी हमारे पास, देखिए खाने की काफी ऐसी चीजें हैं मतलब जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखी जाए तो आजकल आपका मोटे अनाज भी हम देख रहे हैं काफी अच्छा, मतलब लोगों को पता लग रहा है क्योंकि काफी पौष्टिक है
1: जी।
0: तो भून के आप इनका नमकीन बना सकते हैं, आप इनको पीस के चकली जैसे आता होता है आपका नमकीन नाश्ता के रूप में या हल्के चलता फिरता स्नैक के रूप में ले सकते हैं, इसके बिस्किट बनने लग गए हैं इनके, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आपका पास हमारे पास चावल का मुरमुरा होता है, आपका चावल का चिड़वा होता है, इसको पोहे के रूप में या रोस्टेड मतलब भुना हुआ नमकीन के रूप में, इसमें आपने प्याज टमाटर डाल लिया तो एक आपकी भेलपुरी बन जाती है, भुना हुआ चना है, इनको इस्तेमाल करेंगे तो एक चीज पेट भी भरेगा और साथ में हमारी सेहत को भी अच्छा करेगा, तो इस तरीके की चीजों को हम लोग शामिल कर सकते हैं।
1: खाने को हमें संतुलित भी बनाना है, पौष्टिक भी रखना है और इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम ये कि हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब आप यहाँ पर आई और हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी बदलते मौसम में संतुलित पौष्टिक आहार और स्वच्छता, जानकारी दे रही थी डॉक्टर रितु सिंह और बातचीत कर रही थी कमलेश मुदकर। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीपोन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग

0: माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए प्रियंका बहन, आज हम अपने भाइयों को जानकारी तो देंगे ही, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी कराएंगे और एक जानकारी भी उनको दिलवाएंगे। जो हम आज चर्चा करेंगे उसका विषय है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कमज़ोर वर्ग और गरीब वर्ग के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो हमारे भाई हैं वो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, इस योजना के तहत एक बड़ी आबादी को अत्यधिक रिवायती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जिससे कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसमें सस्ता अनाज है। इसके तहत ही अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है, जिसमें कि 35 किलो अनाज मुफ्त पर गरीब परिवारों को दिया जाता है और पोषण सहायता के लिए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी अलग से इसमें भत्ता दिया जाता है। साथ ही बच्चों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है और इसमें राशन कार्ड के जरिए भी परिवार को, जिसमें 18 वर्ष और इससे अधिक के लोग हैं, उसका राशन कार्ड बनता है और उसके जरिए भी अन्न उनको प्रदान किया जाता है।
0: बिल्कुल, राशन कार्ड की अगर आपने बात कही तो जो हमारे भाई हैं उनको 2 किलो गेहूँ प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है और जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले भाई हैं उनको 18 किलो अनाज मुहैया कराया जाता है। और इसके लिए आपको जो हमारे भाई हैं उनको EKYC योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार लिंक और EKYC परिक्रिया के अनिवार्य

0: ये जो दस्तावेज है उनको से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पंजीकरण कराते वक्त आप अपने सारे दस्तावेज साथ रखें।
0: जी हाँ,
1: और देखिए, अगर हम बात करें खाद्यान्न की, तो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलें भी अच्छी हों, और उनकी फसलें अच्छी हों कम लागत में उन्हें अच्छा मुनाफा मिल पाए, इसके लिए हम एक खास जानकारी उनके लिए लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, और जानकारी का विषय है खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन। डॉक्टर वी के तिवारी से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आप फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसमें अच्छा बीज खरीदते हैं और खेत में अच्छी से कृषि क्रियाएं करते हैं, उसके साथ साथ आप उर्वरक हैं, आप उसमें दवाएं हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो आपको मिलता है लेकिन आपकी लागत बढ़ जाती है। ये लागत कैसे कम की जाए और आपका उत्पादन भी अच्छा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के तिवारी जी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक रह चुके हैं क्रिभको में। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अब खरीफ में बिजाई की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात सही है कि किसानों की लागत बढ़ती है जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो कैसे कम की जाए और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिले।
3: कि कैसे हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें, अब आप देख ही रहे हैं इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद बीज का दाम बढ़ता जा, जो बीज है उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है, और जैसा इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, खाद की भी उपलब्धता भी तो वैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, खाद का उपयोग कम करें, और जैविक खेती या परंपरागत खेती भी कुछ करें। तो हम इसमें सलाह देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये ब्लड का टेस्ट करा लो, ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, इस जो धरती माता है इनसे फसलें उगाते जा रहे हैं, लेकिन धरती माता की स्थिति क्या है, कितना खुराक को पौधे को उपलब्ध करा पाएंगी, कितना नहीं करा पाएंगी, क्या क्या स्थिति है हमारे जमीन में पोषक तत्वों की, उसका जरूर किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं, और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कितना इस समय पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फास्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है, और जो मुख्य गौण तत्व तो है, जिंक है, आयरन है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मिट्टी की जांच कराए बिना ही अंदाजे से जब हमारे किसान भाई डालते हैं उर्वरक, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में जाकर के ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके जैविक जो मिट्टी का कीटाणु है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही हमारे किसान भाइयों की लागत भी बढ़ जाती है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी मई जून दो महीना है, और इस समय हमारे किसान भाई लोगों का खेत खाली है, और किसान भाई अपनी मिट्टी का जरूर से जांच कराएं, और मिट्टी का नमूना लेकर के उनके जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है कृषि विभाग का, वहां भेज दें, या जो हमारी क्रिप्को संस्था है नोएडा में ऑफिस है वहां भी वो किसान भाई अपना कोरियर से किसान सेवा केंद्र पे भेज सकते हैं, और वहां निःशुल्क उनकी जांच हो करके उनको मेल के माध्यम से मृदा की रिपोर्ट मिल जाएगी।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मृदा परीक्षण की बात की, तो मृदा परीक्षण कराने के लिए किसान भाई जो सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते समय क्या सावधानी रखें?
3: किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेने के लिए क्या सावधानी रखें? ये सही बात है कि हमारे किसान भाई ऐसा न करें कि जो होता है ना खेत की चौहद्दी मेढ़ मेढ़ के पास से ही एक जगह से मिट्टी निकाल करके दे दिए, तो उससे पूरा खेत का, अब जितना बड़ा खेत है उसकी सही एनालिसिस नहीं हो पाएगी, सही जांच नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये है कि किसान भाई हमारे जैसा खेत हो उस खेत के हिसाब से जो मेड़ होती है उनकी, उस मेड़ से लगभग अपना 3-4 फुट

0: जगह की मिट्टी एक साथ मिला लें और आपस में खूब अच्छी तरह से मिला करके उस मिट्टी को ऐसा करें कि कई भाग करते जाएं और जब लगभग आधा किलो तक हो जाए तो उस आधा किलो की मिट्टी की थैली को अपना मिट्टी की थैली में भर लें और भर करके अपना मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, या जैसे हम आपको बताएं कि या अपने जिले में मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं। तो वहाँ पे जांच होने के बाद इनको किसान भाई को नमूने से ये मिल जाएगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और फसल के लिए उनको कितना खाद जद डालना है। अब हमारे जब किसान भाई करेंगे तो उस मिट्टी के नमूने के जांच में सबसे बड़ी बात ये रहती है, हमारे किसान भाई अपनी सुविधा के लिए केवल यूरिया डाई पोटास तो देख लेते हैं लेकिन उसमें जो गोबर की खाद की संस्तुति की जाती है उसको नहीं डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो फार्म यार्ड मैन्योर का जो रिकमेंडेशन किया जाता है सॉइल लैब द्वारा उसको जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि अभी जो हमारे खेत में कार्बन की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है और कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, कार्बन जो है ये हमारे खेत के जीवाणुओं को एक तरह से पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये जो कार्बन है उन जीवाणुओं का उनके लिए ये पोषक तत्व का काम करता है कार्बन। और कार्बन सही मात्रा में उपलब्ध होने से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में हवा की उपलब्धता सही रहती है, हवा की उपलब्धता सही होने से हमारे जो खेती होती है उसमें मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें हवा का संचार प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। और किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में जल रुका रहता है जिससे पौधों को काफी समय तक नमी प्राप्त होती है। जो हम पोषक तत्व डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं तो घुल करके लीचिंग मतलब बह करके जमीन के सतह से नीचे नहीं जाता है, वो मृदा में उपलब्ध होता है जिससे पौधों को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाता है। तो जो हम इतना महंगा उर्वरक डालते हैं वो हमारी जमीन में नुकसान न होकर के पौधों को उपलब्ध होता है तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्पादन लागत कम होती है तो हमारे किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक हैं जिनके वैज्ञानिक कभी कभी सुझाव देते हैं और जो लागत को कम कराने के लिए दूसरे भी माध्यम हैं जैसे जैविक खाद हो गई, आपके बायोफर्टिलाइजर हो गए, आपकी हरी खाद हो गई, इनका भी तो प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हम बताए आपको कि मृदा परीक्षण में जो ये खाद की संस्तुत की जाती है उसके अलावा भी धान में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया हरी खाद का के लिए। सनई ढांचा जो होता है अभी इसको छिटक करके खेत में बो दें और जब ये लगभग 35 से और 45-50 दिन की हो जाएगी तो इसको खेत में अपना ट्रैक्टर चला करके दबा देंगे और पानी भर देंगे तो उससे वो क्या होगा कि हरी खाद खेत में सड़ करके खाद हो जाएगी और ये हमारी मिट्टी के लिए एक समझिए कि बहुत ही अच्छा काम करेगी, वरदान हो जाएगा। एक जैविक खाद हरी खाद अपना पौधे को उपलब्ध होगी और हमारे मिट्टी की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो हम इसमें उर्वरक डालेंगे आगे चल करके वो भी पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे। और जब हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो चूंकि हम हरी खाद का प्रयोग कर लिए हैं तो हम जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को हम 15-20% तक कम कर सकते हैं तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बीज का नर्सरी में डालते हैं तो आजकल बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है, इससे एजोटोबैक्टर क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको उपलब्ध कराता है पौधों को। इसी तरह से PSB है, फास्फेट सालिवजाइंग बैक्टीरिया होते हैं। जो हम मिट्टी में इतना महंगा DAP खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो पौधे केवल अपनी जड़ की एरिया के पास जो रहता है उसी का उपयोग कर पाते हैं। तो हम थोड़ी मात्रा में बीज को हम बेहन डालते हैं तो इससे अगर हम एजोटोबैक्टर से, PSB से या पोटास सालिवजाइंग बैक्टीरिया से और जिंक सालिवजाइंग बैक्टीरिया से, इनके हम बायो फर्टिलाइजर से को जो बीज कम मात्रा में होता है इसको शोधित कर दें और इसको बोएं तो इस बीज जब शोधित होगा तो ये जीवाणु उस बीज के परत पे लगे रहेंगे और ये जब जमीन में की रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय भी जो नर्सरी होती है उसको इसका बायो फर्टिलाइजर का घोल बना लेंगे, उसकी जड़ को अपना 15 मिनट के लिए डुबो देंगे उस घोल में, उसके बाद रोपाई करेंगे तो ये जो हमारे बैक्टीरिया है ये जमीन में कार्यशील हो जाएंगे और जमीन से जो हमारे उर्वरक

0: पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको घुलनशील दशा में बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे किसान भाई जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में भी डालेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और ये जो हमारे जैविक कीटाणु हैं ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे तो हमारे जो पौधे होंगे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और इसमें कीट पतंगे भी कम लगेंगे। ऐसा देखा गया कि जो हमारे किसान भाई आजकल क्या करते हैं कि पौधे में थोड़ा सा भी इनको लगता है कि पौधा पूरा हरा नहीं दिखाई दे रहा है तो ले जाके यूरिया छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधे में बढ़वार तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पौधा कोमल हो जाता है, सक्सलेंट हो जाता है और उससे हमारे कीट पतंगे और बीमारियां अधिक लगने लगती है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा न प्रयोग करें। यूरिया की मात्रा जितना मृदा परीक्षण में दिया गया है उतना ही करें या उससे कम करें और उसके जगह पे 20-25% की मात्रा इस जैविक खाद से, हरी खाद से और गोबर की खाद से इसको 25 से लेकर 40% तक इसको सब्स्टिट्यूट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया और बहुत से हमारे किसान भाई खरीफ में दलहनी फसलें भी बोते हैं तो दलहनी फसलों में तो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं तो क्या उनके बीजों को भी उपचार प्रचारित करके बोना चाहिए?
0: देखिए, उनके जड़ों में तो पाए जाते हैं, अगर हमारे किसान भाई कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो PSB है, फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो तो जमीन से हमारे जो वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं वो दलहनी फसलों के लिए 10:40 के रेशियो में करते हैं कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध कराएं, तो वो हमारे किसान भाई कर देंगे जब उनका बीज शोधन PSB से फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से, तो वो हमारे किसान भाई अगर उसकी मात्रा कम कर देंगे तो ये हमारे PSB बैक्टीरिया काम करेगा और उसको उपलब्ध कराएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन, डॉक्टर VK तिवारी से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और देखिए, कल हमारा फोन इन प्रोग्राम है, फोन इन कार्यक्रम है इंडियन पोटाश लिमिटेड के सजने से, तो 6:30 से 7:30 तक ये लगातार चलेगा और आप इसमें सीधे फ़ोन करके अपनी गन्ने की फसल के बारे में जो जानकारी आपको लेनी है वो पूरी तरह से ले सकते हैं। हमारा जो विषय है कल का वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल, तो इस विषय पे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे डॉक्टर हमारे विशेषज्ञों से इस जानकारी को आप ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 23:42:10:82 और 23:42:10:83। दिल्ली से बाहर के श्रोता जो हैं हमारे वो 0111 जरूर लगाएं और अपनी फसल के बारे में जो जानकारी उन्हें लेनी है वो वैज्ञानिकों से लें। तो अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना की आवाज़ में।

0: अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र नेमचाना से ये उपदेश। और देखिए, हम अपने कार्यक्रम के जरिए हमेशा आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से सरकार का भी यही प्रयास है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, कम से कम रसायनों का प्रयोग करें और मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं ताकि उन्हें पता चले कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। अत्यधिक उर्वरकों से यहाँ मिट्टी की सेहत भी ख़राब होती है और लागत भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए ध्यान अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो उनकी फसल भी बेहतर होगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होगा।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम, राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करदाते तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ गजलें।

0: इसी गजल के साथ आपसे गजल की इस कार्यक्रम से मैं इजाजत चाहूंगी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी एक स्पष्ट कार्य योजना के तहत विकसित की गई है। एक निजी समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 32,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 9,000 पहले से ही संचालित हैं।
9: हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है। वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग प्वाइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है 32,000 पे लेके जाएं, और उसके लिए हमने जो आरडब्ल्यू है, सोसाइटीज हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। सरकार उसमें पूरी मदद करेगी, सरकार पूरा सपोर्ट करेगी, मैक्सिमम ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
8: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति में केवल सब्सिडी ही नहीं बल्कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और ई वेस्ट संयंत्र स्थापित करने की कार्ययोजना शामिल है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन के स्वच्छ साधनों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
9: ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए।

0: ये था। इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया है। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी, बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो पक्ष जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा था उस पर काम किया।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस महीने के दौरान मनाए जा रहे बाल संरक्षण माह के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। इस दौरान श्री संधु ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ त्वरित और पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपायों को सिर्फ बाल संरक्षण माह के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाए। बैठक के दौरान श्री संधु ने पहली बार अपराध करने वाले किशोरों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने इस महीने के अंत तक दिल्ली के सभी 5,500 से अधिक विद्यालयों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रभावी और समय बद्ध क्रियान्वयन सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि जुलाई माह के भीतर सभी विद्यालयों में मुख्य प्रशिक्षकों और अन्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पूरा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आज नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेकर नकली पहचान और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर उनकी आपूर्ति करता था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज करोलबाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। निगम ने बताया कि 41 दिनों तक चले इस सघन सफाई अभियान के दौरान जोन की सभी मुख्य सड़कों की व्यवस्थित रूप से सफाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनी नालियों और फुटपाथ से पुरानी जमी हुई धूल को हटाया गया, साथ ही ग्रीन बेल्ट से कूड़ा कचरा और सड़क किनारे पड़े मलबे को भी हटाया गया। निगम ने कहा कि इस अभियान में 22 किलोमीटर लंबी सड़कों को कवर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 228 मीट्रिक टन पुरानी धूल और 150 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा तथा मलबा हटाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC कल अपने क्षेत्र के 34 स्थानों पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करेगी। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि दिल्ली सरकार के 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 600 वृक्ष और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए NDMC द्वारा 50,000 से अधिक गड्ढे पूर्व तैयार किए जा चुके हैं। श्री चहल ने बताया कि अभियान के तहत पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक देशी और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हेमेलिया, कैनी लिली, चांदरी और अन्य सजावटी एवं देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी रोपी जाएंगी। श्री चहल ने कहा कि NDMC के लिए वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली अगले महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली में पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। दिल्ली सर्कल के दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पेंशन भोगियों इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पेंशन से जुड़े मामलों जैसे कि PPO जारी करने, सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव और पेंशन वितरण आदि पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यहां अदालती मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल पंजीकृत शिकायतें ही सुनी जाएंगी। शिकायतों के निपटान के लिए पेंशन भोगी 20 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800

0: 8811 पर कॉल करके और डाक द्वारा संचार लेखा भवन के पते पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े दो अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्तौल और खतरनाक पेट्रोल बम बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। मंत्रालय पिछले 29 वर्ष से विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 51 विद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज दूरदर्शी राजनेता, राष्ट्र निर्माता और प्रतिष्ठित विद्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अधिक राष्ट्र प्रेम का प्रतीक था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शहीदी पार्क स्थित डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था।
3: डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश की अखंडता के अपना सर्वस्व न्योछावर किया, 75 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा वो सपना पूर्ण हुआ और धारा 370 को जड़मूल से समाप्त किया गया और कश्मीर के आवाम को एक नई सुबह देखने का अवसर मिला। आज पूरा देश डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के पश्चात एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे मन में है।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि डॉ मुखर्जी के आदर्श राष्ट्र निर्माण, सुशासन और जनसेवा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉ मुखर्जी आज भी उस नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने सत्ता से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर एक राष्ट्र एक विधान का संदेश दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समितियां बनाई गई हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

के सचिव एस कृष्णन और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल। राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। स्टूडियो की घड़ी ने बजा दिए हैं रात के 8 और आ चुकी हूँ मैं लेकर कुछ चुनिंदा गीत देने आपका साथ। और आज की गीत मालिका के इस रोलर कोस्टर राइड में आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। तो पहले खास आपके लिए, स्पेशली फॉर यू, ये गीत और फिर करेंगे हम मिलकर थोड़ी सी बातचीत।

दोस्तों कहते हैं कि ये जो प्यार की शुरुआत है ना, ये एक छोटे से आओ ना से होती है। जैसे कि आओ ना तुम भी बैठो, आओ ना चाय पीने चलते हैं, आओ ना वहां साथ चलते हैं। और फिर कब वो मुलाकातों, मुस्कुराहटों और ढेर सारी यादों का दौर बनता चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इस गीत में आपने उस प्यारी सी मासूम सी पुकार को महसूस किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दो दिल सच में एक दूसरे का साथ चुन लेते हैं ना, तो फिर मंजिल नहीं सफर मायने रखता है, और उस सफर में बस चार कदम नहीं पूरी जिंदगी साथ चलने

का एहसास छुपा होता है। तो आइए बढ़ाते हैं इसी खूबसूरत से एहसास को थोड़ा और आगे, बनाते हैं इसी एहसास को थोड़ा और खास।

कभी कभी ना प्यार की सबसे खूबसूरत बातें शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने से कही जाती हैं। लेकिन अब हर प्रेम कहानी इतनी आसान भी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त से जुड़ते हैं और कुछ रिश्ते वक्त से लड़ते हैं, कुछ हालात से और कुछ अपने ही दिल से। और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगे तब तो दिल हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सच्चे प्यार में नफा

हर प्रेम कहानी इतनी आसान भी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त से जुड़ते हैं और कुछ रिश्ते वक्त से लड़ते हैं, कुछ हालात से और कुछ अपने ही दिल से। और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगे, तब तो दिल हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सच्चे प्यार में नफा नुकसान का तो हिसाब ही नहीं होता ना। बस एक ही चाहत होती है, अपने हम सफर का साथ।

फिर हर मुलाकात किसी त्योहार जैसी हो जाती है, हर मुस्कान एक नई कहानी लिख देती है। लेकिन प्यार ना, प्यार सिर्फ हंसाता नहीं है, ये थोड़ा सा शर्माता भी है, थोड़ा सा तड़पाता भी है, थोड़ा सा झिझकता भी है, और कभी कभी तो चांद को भी अपनी तरफ मिला लेता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत करने वालों के सामने चांद भी आने में थोड़ा झिझकता, थोड़ा शर्माता है। जैसे कि मोहब्बत का गवाह तो बनना है, लेकिन क्या करे, थोड़ी थोड़ी शर्म का भी लिहाज रखना है। तो फिर खूबसूरत प्यार के नाम, बादलों के नाम, इस खूबसूरत चांद के नाम एक गीत तो बनता है।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका और आज गीत मालिका के इस रोलर कोस्टर राइड पर आप हैं मेरे संग यानी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। कुछ गाने होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि खत्म तो हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास जो होता है वो यहीं कहीं आपके आसपास ठहर जाता है। अभी देखिए ना चांद बादल और रात की बातें हो रही थी और अब हम बात करेंगे उन सवालों की जो प्यार में हर दिल कभी ना कभी जरूर पूछता है। वैसे प्यार ना ये होता बहुत शरारती है, पहले चुपके से दिल में एंट्री करेगा और फिर मुस्कान पर कब्जा और फिर दिमाग को भेज देगा हॉलिडे पर, ना कुछ सोच पाओ ना कुछ समझ पाओ। अच्छा लगता है तो बस उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात, सब कुछ स्पेशल, हर धड़कन कोई नया राज सुनाने लगती है और तब दिल बस यही सोचता रह जाता है क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ खुदा जाने।

दोस्तों, ये मोहब्बत भी ना ये बहुत दिलचस्प चीज है। शुरुआत में तो दिल बस एक ही बात सोचता रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराहटें बढ़ने लगती हैं, मिलने के बहाने बनने लगते हैं और बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन सबसे मुश्किल पल तब आता है जब दिल में तो बहुत कुछ होता है लेकिन होठों तक आते आते सारे अल्फाज गायब हो जाए। आखिर कब तक नजरें ही सारी बातें करती रहेंगी? कभी तो दिल की बात दिल से निकलकर लफ्जों तक भी पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होते, उन्हें ना कह देना भी जरूरी होता है।

आप सुन रहे थे अरमान मलिक को, जो फिल्म अजहर में कह रहे थे बोल दो ना जरा। वैसे प्यार में सबसे मुश्किल काम होता है दिल की बात कह देना, लेकिन एक बार वो बात कह दीजिए तो फिर जिंदगी ना पहले सी नहीं रहती। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और हर मौसम गुनगुनाने सा लगता है। खैर, दिल की बात तो हमने कह ही दी, अब आगे क्या? अब शुरू होती है वो प्यारी सी कहानी जहां मैं धीरे धीरे हम बन जाता है, फिर सुबह भी खास लगती है और शाम भी खास हो जाती है। जिंदगी का हर खूबसूरत लम्हा बस एक ही नाम से जुड़ जाता है।

वैसे दोस्तों, इश्क का भी ना एक अपना बड़ा मजेदार सा सिस्टम है। पहले तो दिल महीनों तक रिहर्सल करता रहेगा कि बोलूं या ना बोलूं, फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर कह ही दिया, बोल दू ना जरा, और बस उसके बाद तो कहानी का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब हर मुलाकात में तारीफ का नया बहाना, हर मुस्कान पर दिल का नया फसाना। कभी लगता है ये मुस्कान इतनी प्यारी कैसे है, तो कभी

लगता है हाय, ये सादगी इतनी खूबसूरत कैसे है। सच कहूं तो मोहब्बत में कॉम्प्लीमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, और जब दिल पूरी तरह इम्प्रेस हो जाए तो डिक्शनरी के सारे शब्द छोटे लगने लगते हैं।

और बस दोस्तों, इसी प्यारी सी मुस्कान, खूबसूरत से एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ आज के सुरीले सफर के रोलर कोस्टर राइड को यहीं देना होगा विराम। उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, चेहरे पे मुस्कान भी आई होगी और आपकी कुछ खूबसूरत यादें फिर से ताज़ा जरूर हुई होंगी। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। मैं दीप्ति पाठक निधीश फिलहाल के लिए चाहूंगी आपसे इजाजत। आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदा।

0: स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

0: अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों

0: समाचार मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की।

0: Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकत दारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के

गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज

أرضنا بعدنا.

0: दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओं कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian

दोस्तों आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तुमसा नहीं देखा। इस फिल्म के गीत के साथ संगीत दिया है ओपी नैयर ने, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

लीजिए दोस्तों, सुनिए अगला गीत फिल्म धूल का फूल से। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीत दिया है एन दत्ता ने, आवाजें आशा भोसले और महेंद्र कपूर की।

अगला गीत फिल्म काली टोपी रुमाल से, आवाजें हैं लता मंगेशकर की और संगीत है चित्रगुप्त का।

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म साधना से, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की हैं। गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीत दिया है एन दत्ता ने। आइए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है फागुन, आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने और गीतकार हैं कमर जलादार वादी।

लीजिए सुनिए गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है मधुमति, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की हैं, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

अगला गीत फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आवाजें गीता दत्त की हैं, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है उजाला और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। आवाजें हैं लता मंगेशकर की, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: सुहाना तहलीना
1: अंदाज़ मेरा मस्ताना।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे, यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को है। आज से थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुन।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए

0: चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े चार आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का, और लीजिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश है। इस गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे।

0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजय और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियाज लेदर एंड फुटवेयर सेक्टर व्हिच करंटली एक्सपोर्ट्स गुड्स वर्थ अराउंड 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल विद 38 डेवलप्ड कंट्रीज ओपनिंग देयर मार्केट्स टू इंडियन प्रोडक्ट्स थ्रू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। दीज कंट्रीज इंक्लूड

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत KS गोपाल कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे केस गोपाल कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में। पांच बजकर 20 मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का। पांच बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वर रंजनी, जबकि 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 6 बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

0: 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। छह बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, जबकि 6:55 का वक्त होगा संस्कृत में समाचार का। 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, जबकि 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका, जबकि 7:30 का वक्त है कार्यक्रम गीतों भरी का। 8 बजे हिंदी में समाचार, जबकि 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अब सुबह के 5 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। रूस के अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं, ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं।

अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। ये महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।